0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
1: Mirchi One. It's hot. With Mirchi. Fresh Maal.
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये कहा जाता है ना, सुख दुख का साथी, और ये एक इंसान हो जरूरी नहीं है वैसे तो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ख्याल कुछ ऐसा आया कि हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो हम उस इंसान के पास जाते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और हम हमारी सारी खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन पता है क्या, जब हम उदास रहते हैं, व्हेन वी आर एट द लोएस्ट, तब हम उस इंसान के पास जाते हैं जो हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो हमें समझ सकता है नहीं। और ऐसा बहुत कम होता है कि ये जब खुशी और दुख शेयर करने वाला इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में, वो एक ही हो। है क्या ऐसा कोई? अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी की हर खुशी हर गम शेयर कर सकते हैं ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो। और वैसे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि वो इंसान कौन है आपकी ज़िंदगी में। चलिए इस खूबसूरत ख्याल के साथ आपकी खुशियाँ बांटने के लिए और आपके दुख सुख के लिए हम भी यहाँ पर हैं, और उसी हिसाब से हम यहाँ पर उसी मोमेंट के हिसाब से गाने भी बजाने की कोशिश करते हैं। तो बस सिंपली आफ्शीन माइक से दिल तक शो की शुरुआत करती है राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Ya bana. Burka, burka. La fiyatma la burka. Mirci, burka.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे।
1: क्या हो गया

0: यार मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है। मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ले मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ क्या है
0: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
0: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम क्या है?
0: चंद्रो फोन लेके आ।
1: डिस्प्ले आ रहा है?
0: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
0: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
0: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
0: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
0: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
0: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: थोड़ी ना मैन्युफैक्चर
0: किया सर, आपने नहीं बताया आपको पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
0: गुब्बारे वाला फोन यार बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
0: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
0: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
0: यहाँ फोन मत करिए यार।
2: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
2: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है,
2: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
2: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

देखिए आपके कतर आईडी पे जो आपका फोटो है बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया है एंड यू नीड टू चेंज, देन डोंट वरी, इट्स क्विक एंड इजी. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. एंड अक्सर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता रहती है, स्मार्ट तो है आप, लेकिन कभी कभार एक जेंटल से रिमाइंडर होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं एंड इट इज हेल्पफुल एस्पेशली दोज हु नीड्स टू हियर दिस एट दिस राइट टाइम. जैसे फोटो चेंज करना एट इन योर क्यू आई डी इज एब्सोल्यूटली ईजी टू अपडेट योर क्यू आई डी फोटो. आपको बस एक न्यू ब्लू बैकग्राउंड वाली फोटोग्राफ अपनी लेकर आनी है टू अ गवर्नमेंट सर्विस सेंटर, एक टोकन लेना है और फिर उसके बाद में एट द इमिग्रेशन सर्विसेज एंड रिक्वेस्ट अ रीप्रिंट ऑफ द क्यू आई डी. बस इतना सा ही है. वेल इट्स रिकमेंडेड टू कन्फर्म फोटो बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट्स विद ऑफिशियल्स. ठीक है, कहाँ आप जा सकते हो? आप निजामी सर्विस सेंटर जा सकते हो, रयान सर्विस सेंटर, वक्रा सर्विस सेंटर, हानिया, द पर्ल, उम सनीन, अलखोर, अल शमाल, उम सलाल, एचएमसी, सुख वाकिफ, ये सारे सर्विस सेंटर्स हैं. अगर आप कहोगे कि हम ये ऑनलाइन कर सकते हो तो नो माय फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन नहीं होता है, आपको फिजिकली जाना ही पड़ेगा. उसके अलावा व्हाट्स द फीस टू चेंज माय फोटो, तो आपको बस 100 कथरी रियाल देने होंगे फॉर रिप्रिंटिंग विदाउट एनी एडिशनल फीस. अब क्या आप ये मेट्राश के थ्रू कर सकते हो? तो नो माय फ्रेंड्स, आपको गवर्नमेंट के सर्विस सेंटर पर जाना ही पड़ेगा. एंड ऐसा है कि आरपी रिन्यूअल होना होगा तभी आप ये क्यूआईडी का फोटो चेंज कर सकते हो, तो ये भी ऐसा नहीं है. आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका क्यूआईडी का जो फोटो है वो चेंज कर सकते हो. सो बस ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है. शायद ये हो सकता है कि कोई आज ये करने जा रहा होगा एंड दिस इन्फॉर्मेशन माइट कम अक्रॉस वेरी यूजफुल टू यू. सो बस ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आफरीन के साथ जुड़े रहिएगा राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, आपकी सुबह वाली आदत. माइक से दिल तक आफरीन ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: में स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ओ मेरे बंधु, डंकी का गाना सुनकर मजा आया कि नहीं? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और गुड मॉर्निंग कहते ही यहाँ पर गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग के इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं, तो पहले उन्हें गुड मॉर्निंग कर ले जिन्होंने मैसेज किया है. यहाँ पर नाजनीन जी का मैसेज आया है, हे गुड मॉर्निंग आफरीन, हाउ आर यू? इट्स आलीशान. गुड मॉर्निंग आलीशान. वेल यहाँ पर और भी है, कौन है ये, सैयद हकीम जी ने भी गुड मॉर्निंग कहा है. और ऐसे ही आप भी अगर गुड मॉर्निंग कहना चाहते हो तो 5000196 मेरा व्हाट्सएप नंबर है. गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कर लेते हैं. शो की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जरा तापमान की तरफ देखते हैं कि आज क्या कहता है हमारा वेदर.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: वेदर अपडेट. देखो जी, हमें तो पता है कि ये पूरा गर्मी वाला महीना है, लेकिन आज का दिन शायद कुछ अलग भी हो सकता है. एक तरफ ये भी कहते हैं कि कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट के शायद बारिश हो सकती है. देखो उम्मीद तो पूरी है, और ये जो बारिश होती है ना, वो मेरे ख्याल से ना हम जहाँ रहते हैं उसे छोड़कर बाकी सारी जगह पर होती है, वो भी लाइक कतर के बॉर्डर्स पर कहीं दूर दूर पर. लेकिन कल से तो कोई खबर आई नहीं है कि कहीं बारिश हुई है, लेकिन फिर भी अभी होप तो है कि बारिश होगी. हैविंग सेड दैट, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई है आज, 71%. कैन यू जस्ट बिलीव इट? लाइक अमूमन ये जो नॉर्मल डेज पर हमारी जो ह्यूमिडिटी होती है कतर की 20%, 25% और इवन लेसर, लाइक जस्ट इमेजिन इट इज ऑलमोस्ट 3 times मोर. सो बस हाँ, गर्मी होने वाली है, पसीने भी बहुत निकलने वाले हैं. मैक्सिमम टेम्परेचर 43°C तो है कहने के लिए, लेकिन महसूस तो ज्यादा ही होगा, और 34°C मिनिमम रहेगा. सो ऑल इन ऑल अपना ख्याल रखो भाई, हम तो तैयारी में है ही पहले से, तो आप भी हो जाइए. Meanwhile, I'm sure this song coming, the next song coming up song is going to give you so much relief.
2: साची साची तेरी नजर
0: है ना? सोनाली घोष, श्रेया घोषाल की आवाज जब साथ आती है ना, everything feels right. Enjoy this beautiful गाना दबंग मूवी से ऑन मिर्ची. It's hot.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah live.

देखिए क्यों ना करें आप हमसे प्यार, इतने मजे के गाने तो यहाँ पर बजते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड यस इट इज वेनसडे 5th of August। देखते ही देखते हफ्ता काफी तेजी से आगे बढ़ गया है एंड एट दिस पॉइंट मैं लेकर आना चाहूंगी एक ऐसी खबर जो आप सभी के लिए है, इट्स इन अ पब्लिक एडवाइजरी, ठीक है, जो कुछ ऐसी है दैट कतर जनरल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉरपोरेशन जो करहामा है हमारा, उन्होंने ये खास कर सारे लोगों को, कस्टमर्स को जितने हैं सभी को कहा है कि उनका जो बोर्ड होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर नंबर प्लेट होता है जो घर के आपके बाहर जनरली फिक्स रहता है, उसका स्पेशल केयर कीजिए। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप घर में कुछ रेनोवेशन होते हैं या बिल्डिंग की मेंटेनेंस होती है और उस चलते ये जो प्लेट्स होते हैं कभी डैमेज हो जाते हैं, कभी निकाले दिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए, या फिर कवर किए जाते हैं या फिर ऑल्टर करते हैं कुछ भी तरीके से, तो ये सब कुछ ना करते हुए इसका बिल्कुल ध्यान रखें। और ये जो एडवाइजरी है इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाली है करहामा ने। सो वेल द कॉरपोरेशन ऑल्सो स्ट्रेस्ड कि कस्टमर्स अगर कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो दे आर हेल्ड फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी हार्म कॉज टू द प्लेट्स और द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन देम। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई हमें, है ना। वेल विद दिस अकाशा सिंह और नीति मोहन कमाल खान की आवाज में कमाल का गाना कमिंग योर वे। Enjoy this track on Mirchi, it's hot.

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah, live in

0: Creation with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: Hello, Mirchi Helpline.
4: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
3: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं? समझ ही नहीं आ रहा।
4: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
5: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, अ परफेक्ट गाना विशाल मिश्रा की आवाज में फ्रॉम द न्यू मूवी टॉक्सिक। मैं हूँ आफरीन आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:04 की तरफ और अगला गाना वन ऑफ माई फेवरेट्स।
2: मैं तेरी आंखों में
1: वेल, किंग की आवाज में
2: तुझे खुश मैं रखूंगा।
1: एंजॉय दिस ट्रैक राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: खामोशी कभी देख सकता नहीं सारे
0: ट्रायल पैक नाउ।
1: वेल, अ परफेक्ट गाना विशाल मिश्रा की आवाज में फ्रॉम द न्यू मूवी टॉक्सिक। मैं हूँ आफरीन आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:04 की तरफ और अगला गाना वन ऑफ माई फेवरेट्स।
2: मैं तेरी आंखों में
1: वेल, किंग की आवाज में
2: तुझे खुश मैं रखूंगा।
1: एंजॉय दिस ट्रैक राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

देखो तू भी मान ले मेरी जान, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्रीन का साथ है राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स। और कहा ही कतर में ऐसे मौके आते हैं जब आपको इतने जबरदस्त इवेंट्स, जो इस बार ना इट्स अ म्यूजिकल इवेंट, मतलब मेरा मतलब ये है कि सिंगिंग नहीं है, डांसिंग नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ अलग इवेंट लेकर आए हैं मिर्ची एज ऑलवेज। और वो क्या है, वो है सुहानी शाह, इंडियाज नंबर वन मेंटलिस्ट व्यूअर से, और वो हमारे यहाँ पे लाइव परफॉर्म करने वाली है, मतलब लाइव अपने ट्रिक्स मैजिक्स ये सब कुछ बताने वाली है। एंड अक्सर हमने इनके वीडियोस काफ़ी देखे हैं सोशल मीडिया में, जहाँ पर ये सलमान खान के साथ में कुछ अपने अलग ही करतब जो बता रही हैं, उसके अलावा आमिर खान का माइंड रीड कर रही हैं, एंड सो मेनी मोर धोनी, एंड यस बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमने देखे हैं। एंड वी ऑलवेज वंडर ना कि यार ये कैसे करती होगी यार। अब जब आपको मौका मिल रहा है पूरा का पूरा शो देखने का, हमने तो भाई वो 30 सेकंड्स 1 मिनट के रील्स ही देखे हैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर, बट नाउ यू कैन विटनेस हर लाइव। सो हियर इज अ चांस, 25th of September इज द डेट जब वो कतर में होगी, लाइव परफॉर्म करेंगी एट QNCC, एंड यू कैन गो एंड बुक योर टिकट्स नाउ। और देखिए अक्सर ये होता है मिर्ची, जब इवेंट कोई लेकर आता है ना, तो फिर क्लोज टू द इवेंट आपको फोमो होने लगता है कि नहीं नहीं नहीं अब वी शुड गो, वी शुड विजिट, और फिर टिकट्स जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती, एंड देन यू कम रनिंग टू मी, यार आफरीन कुछ तो जुगाड़ कर लो टिकट का। तो बस अभी बता रही हूँ 20% डिस्काउंट पर अभी चल रही है, एंड फ्यू टिकट्स आर लेफ्ट। SCT एंड स्नूनू सिटी इज द प्लेस वेर यू कैन बुक योर टिकट्स। उसके लिए फटाफट से आपके फोन में आई एम श्योर स्नूनू का ऐप तो होगा ही, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, सिर्फ ये टिकट्स के काम नहीं आएगा और भी चीजें के लिए काम आ जाएगा वो ऐप। सो यस, सुहानी शाह लाइव इन कतर परफॉर्मिंग ऑन 25th of September एट QNCC। शिखर की आवाज में ये अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है, टैक्सी नंबर 911 का। आई लव द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, या हाउ ब्यूटिफुल इट इज। एंजॉय इट ऑन मिर्ची माइक से दिल तक आप ट्रेन के साथ, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Murga, murga. La virtua la murga. Milci, murga.
2: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो. हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका. इंजेक्शन मत दो उसको. वन सेकेंड. मिस्टर मनोज
3: जी बोल रहा हूँ.
2: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ. प्लीज यहाँ पे आ जाइए. मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी.
3: कहाँ ना सर?
2: हॉस्पिटल. प्लीज आप जल्दी आ जाइए.
3: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
2: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए. आगे ले आओ.
3: मैं दे दूंगा.
2: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी. इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं.
3: 4 यूनिट?
2: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज. ब्लड नहीं चाहिए इसको. आगे ले आओ. अब आगे ले आओ उसको. आगे ले आओ. ब्लड नहीं चाहिए इसको. हाँ, ब्लड नहीं चाहिए इसको. यूरिन की कमी हो गई है. आपका यूरिन चढ़ाना है. प्लीज जल्दी आ जाएंगे.
3: क्या चढ़ाना है?
2: यूरिन चढ़ाना है. इसका सारा यूरिन खत्म हो गया. प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे.
3: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है.
2: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से. असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था. ये रात को बाहर निकल गया. इसको मना भी किया था पहले. मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था. इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो. ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था. चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया.
3: पेशाब निकल गया. मैं पेशाब चढ़ाऊं?
2: आपका ग्रुप मिल गया
3: सर. इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
3: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है. मैं आपको बताता हूँ. ये मेरे पास सारी डिटेल है. 1 सेकंड रुकिए. कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे.
3: जी जी.
2: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं.
3: अच्छा.
2: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है.
3: क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आ रहा.
2: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है. प्लीज जल्दी आ जाइए यार.
3: अभी तो सर लग नहीं रहा. 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
2: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा. कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए. और आप इतना वो परेशान मत होइए. आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
3: जी
2: वो हम चढ़ा देंगे आपके. आप फिक्र ना करें.
3: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है. अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा. तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. मैंने मजाक किया था.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं. या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah, live in

ये कतर में रहते हुए आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हो या फिर फैमिली वीजा से कंपनी स्पॉन्सरशिप पे शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर ये एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो वैसे स्मार्ट तो आप है ही, आपको सब पता होता है, लेकिन कभी कभार एक जेंटल रिमाइंडर ही काफी हेल्पफुल हो जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट यानी PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में, जो एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है जो कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इशू करती है। इसका मतलब ये होता है दैट कतर में रहते हुए इस दौरान में आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ये सर्टिफिकेट मेट्रैश ऐप के थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर आप फैमिली स्पॉन्सरशिप से कंपनी स्पॉन्सरशिप में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जनरली PCC रिक्वायर्ड होता है, और अगर आप फैमिली वीजा पर ही रहकर कंपनी का वर्क परमिट बना रहे हैं तब भी एम्प्लॉयर को वर्क परमिट प्रोसेस के लिए कतर का PCC चाहिए होता है। देखिए कुछ एम्प्लॉयर्स आपसे आपका होम कंट्री का भी PCC मांग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पॉलिसी। अब सिर्फ ये नहीं है, कतर में अगर गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कंपनी हो, हायरिंग के टाइम PCC मांगा जाना काफी कॉमन लगता है यहाँ पर। इसलिए अगर आप जॉब स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में पहले से अवेयर रहना काफी स्मार्ट मूव होता है। देखिए कभी कभी ना एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ही आपके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को काफी स्मूथ बना देता है, तो PCC को लास्ट मिनट तक मत टास्क रखिएगा, पहले से ही रेडी रखिएगा इफ यू आर अंडर दिस प्रोसेस। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे जुड़ी हुई, कतर से जुड़ी हुई लाते रहूंगी राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। माइक से दिल तक आफरीन के साथ, ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार, तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
4: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
5: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC supply.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah live.

0: वेल अमर जलाल की आवाज में, साथ में आई पी सिंह एंड बहुत सारे सिंगर्स है, योहानी एंड सो मेनी मोर. ये था गाना जेड़ा नशा और अभी आप सुन रहे हो मुझे यानी और समझदार को इशारा काफ़ी है. ऐसे मैं अक्सर कहती हूँ और यही इशारा देने आई हूँ कि अब गेम खेलने का वक्त आ गया है. मैं सीन सुनाने वाली हूँ एक मूवी से और आपने गेस करना है आखिर ये मूवी है कौन सी. आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लगेगी, ऑफकोर्स लेजेंडरी एक्टर की आवाज़ है, लेकिन फिर भी आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार ये कौन सी मूवी हो सकती है. चलिए डायलॉग सुन लीजिए ना, उसके बाद में मैं थोड़े से हिंट दे देती हूँ आपको. सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से सुनो.
1: तू बता, मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी है 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है. पूछो क्यों?
2: तुम्हारा ही.
1: नहीं पूछो क्यों. अरे पूछो क्यों. पूछो क्यों.
2: क्यों?
1: वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा.
2: बड़ा बेवकूफ है. गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं.
1: एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो. टेक योर चांस बेबी.
0: All right. Take your chance. So have you guessed कि ये कौन सी मूवी है? 5000 1896 is my WhatsApp number. And जहाँ एक्टर की बात आती है, he really doesn't need any introduction. काफी सारे messages already यहाँ पर आ गए यार. कमाल है. खुमैल सुलेमान and then who is this? अपना नाम लिखा करो भाई. अख्तर का मैसेज आ गया है. Yes, I think so. Everyone is almost right. और अगर आप अब भी सोच रहे हो कि भाई आवाज तो हमने पहचान ली है, ये हिंट दे देती हूँ चलो मैं कि ये मल्टी स्टारर मूवी है. और जिनको ये मूवी पसंद है ना, इसका अब हाल ही में एक सीक्वल नहीं कह सकते, पार्ट टू भी आया था. एंड जब भी ये मूवी आती है या इसका पार्ट टू आया था, आई थिंक सो इट्स ऑलवेज गुड. और इसके गाने बहुत अच्छे होते हैं. एंड दोज पीपल हु लाइक्स दिस मूवी हैज अ ग्रेट टेस्ट ऑफ मूवीज, आई कुड से. बस काफी है ना इतना हिंट. 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. और अगला गाना सॉफ्टली सॉफ्टली प्ले करते करण औजला की आवाज और ये गाना.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
3: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोस पीपल।
2: तृप्ति डिमरी स्पिलिंग सम ट्रूथ बॉम्ब्स ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
5: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
4: योर स्पेशल ऑफर?
5: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
4: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
5: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
4: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah, live in

0: वाओ, व्हाट अ सॉन्ग. पता है, जब भी मैं ये गाना देखती हूँ ना, इसका वीडियो, मैं शाहरुख खान को नहीं देखती हूँ, मैं काजोल को नहीं देखती हूँ, मैं इस गाने में बस इसके लोकेशंस देखती हूँ. एंड लेट मी टेल यू, ये कोई भी वीडियो इफेक्ट्स नहीं है इस लोकेशन के, AI नहीं है, कुछ नहीं है. दीज आर एक्चुअल लोकेशंस, रियल लोकेशंस इन आइसलैंड. और मेरे जिंदगी के एक, कहते हैं ना, ट्रैवल लिस्ट में, बकेट लिस्ट में ये एक जगह है जो मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से जाना चाहती हूँ समडे, इंशाल्लाह. वेल, लेट्स कम आउट ऑफ माई मैनिफेस्टेशंस और मेरी ट्रैवल लिस्ट, और आते हैं हमारे गेम की तरफ जिसका नाम है लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. और यहाँ पर आज मैंने बड़े ही लेजेंडरी एक्टर की आवाज मैंने सुनाई थी. कौन है, जरा सुन लेते हैं.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: तू बता, मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है. पूछो क्यों?
3: तुम्हारा ही.
2: नहीं, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पूछो क्यों?
3: क्यों?
2: वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा.
3: बड़ा बेवकूफ है. गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं?
2: एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो. टेक योर चांस बेबी.
0: All right. पूरा डायलॉग मैंने इसलिए प्ले करा है क्योंकि यार इसमें बहुत ही मजे का एक लेसन है. एंड आई जस्ट लाइक दिस मूवी, आई लाइक दिस एक्टर बहुत ज्यादा. एंड आई एम श्योर दिस वन एक्टर हैज नो हेटर्स एट ऑल. कौन है ये, मैं थोड़ी बताऊंगी, ये आप ही तो बताओगे.
4: गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग. हाँ जी अख्तर साहब.
4: द मूवी इज लाइफ इन मेट्रो.
0: हाँ जी.
4: द प्रोटैगनिस्ट व्हिच द वॉइस इज ऑफ None other than the living legend, late Mr. Irfan Khan.
0: All right.
4: Thank you.
0: All right. Yes. Legendary actor Irfan Khan ki awaaz, saath mein Konkana Sen Sharma. Bahut saare logon ne bilkul sahi jawab diya hai. Saying that it is life in a metro. Charlie ka message aaya hai. Then I have Suleiman saying the same. Then I have Khumel saying the same. Then aur kaun hai, kaun hai, kaun hai yahan par? Irfan Khan also. Irfan Khan pata hai, par apka naam kya hai? Woh mujhe bataiye. Life in a metro. Bilkul sahi jawab hai. So yes, one of my favorite movies. Aur jo metro in dino aayi thi na, mere ख्याल से इरफान खान की कमी कोई पूरी तो नहीं कर सकता है, लेकिन पंकज त्रिपाठी ने जरूर इस मूवी में, द पार्ट टू में, बहुत ही अच्छा रोल निभाया था. एंड टॉकिंग अबाउट द मेट्रो या लाइफ इन अ मेट्रो, गाने इतने जबरदस्त हैं, आई वुड से दे आर वेरी अंडररेटेड म्यूजिक एल्बम. सुहेल सोहम की आवाज में ये गाना. अनमिर्ची माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।

0: देखिए वैसे तो मुझे कोई क्लासिक गाने का रीमेक और रीमिक्सेस बिल्कुल पसंद नहीं है या रिक्रिएशन नहीं अच्छा लगता है अनलेस इट इज़ बाय अरिजीत सिंह एंड सो वेल पुट टुगेदर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सदमा मूवी का ये गाना था बट अरिजीत सिंह यू हैव डन फुल जस्टिस टू दिस सॉन्ग. मैं हूँ आफ्टरीन आपके साथ. मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:04 की तरफ.
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: और चलिए जरा थोड़ी बॉलीवुड की बातें करते हैं. बॉलीवुड में न जाने कितने एक्टर्स आए कितने एक्टर्स गए लेकिन बहुत से कम लोग होते हैं जिनका कमबैक सक्सेसफुल होता है. सारे श्रीदेवी थोड़ी होते हैं और सारे अमिताभ बच्चन भी नहीं होते. सो वेल ऐसे ही एक रिस्क लेने आ रहे हैं आई वुड से एक एक्टर जिनकी मूवी 10 साल पहले आई थी और अब फिर से आने वाली है. सो यस दैट इज नन अदर देन द चॉकलेट बॉय जिसने जाने तो या जाने ना में हमारा दिल जीता था. द कूल ड्यू who was super cool in Delhi Belly and yes you've got it right it is Imran Khan jo 10 saal baad acting mein comeback kar rahe hain. Well unki last film jo thi it was Katti Batti 2015 mein actually yes aisi movie aayi thi probably that's why unka career uske baad mein khatam hua tha. It was opposite Kangana Ranaut. Ab wo Netflix par ek romantic comedy lekar aa rahe hain jiska naam hai Adhure Hum Adhure Tum and yahan par wo nazar aayenge opposite Bhoomi Pednekar. So well dekhte hain kis tarah se inka ye कमबैक सक्सेसफुल होता है या नहीं. लेकिन जहां बात करते हैं कमबैक्स के बारे में ऐसे कुछ कई सारे आई वुड से बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने

नाम है जो पहले बॉलीवुड में आते थे. आई एम नॉट श्योर दे वुड बी पॉपुलर और दे वुड हैव अ बेटर कम बैक, लेकिन जायद खान एक है जो अर्ली 2000 में बहुत सारी लड़कियों के बहुत फेवरेट भी हुआ करते थे, बट देन सडनली ही डिसअपियर्ड. देन ऑल्सो फरदीन खान वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज क्यूटनेस. देन डीनो मोरिया के डिम्पल्स, यस. आई डोंट नो हाउ द जेंजी या फिर मिलेनियल्स हैव गॉटन ओवर देम, बट हाँ, हो सकता है शायद दे कैन ऑल्सो ट्राई देयर कम बैक, प्रॉबेबली नॉट एज अ लीड रोल बट इन अ डिफरेंट कैरेक्टर, अ डिफरेंट अवतार. वॉट डू यू थिंक? आप किसका कमबैक देखना चाहते हो? चलिए दिलजीत पाजी की आवाज में गाना सुनाती हूँ साथ देते हुए बादशाह. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा.

0: Milci. I skabana, poskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na virtuala murga.
1: Milci, murga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बना दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
2: नहीं
3: दीदी, मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए।
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Yeah.
1: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
2: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
4: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
6: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
3: The mentalist Suhani Shah, live

जिंदगी में कन्वीनियंस किसको नहीं चाहिए होती है? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा एडवांस कर दिया है और हर चीज़ को हमारे लिए कन्वीनियंट करते जा रही है. जैसे आईपे का ये ऐप ही देख लीजिए. मतलब महीने की शुरुआत थी और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं मेरे हेल्पर मेड या किसी को सैलरी देनी होती थी ना, तो कैश निकाल कर देना होता था एंड काफ़ी डिलेज हो जाते थे उस वजह से. तो अब से आईपे पर ये ऑप्शन है कि आपके जो हाउस हेल्प है या जो भी है, उनको आप सैलरी आईपे के थ्रू भी दे सकते हैं. एंड दैट्स अ रियली हेल्पफुल फीचर आई वुड से, विच आई हैव यूज्ड इट. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ही आसानी से आप आपके हाउस हेल्प है या जो भी है जिनको आप सैलरी देना चाह रहे हैं, और उनके पास आईपे का एक बस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. उसके बाद में क्या है, वो आईपे का कार्ड भी ले सकते हैं जाकर. देर इज़ अ कार्ड एज वेल जहाँ पर वो ये अमाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो जाकर इसे विदड्रॉ भी कर सकते हैं. हाउ इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना. जहां पर कन्वीनियंस की बात आ रही है, द बेस्ट टू ऑफर की बात आ रही है, एक्सचेंज रेट भी ऐसे ही है आईपे के, जबरदस्त. तो आज का एक्सचेंज रेट देखो, ये कहता है 31 रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.06, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज 76.30. बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 31 रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको 33.96, वेर एज श्रीलंकन रुपीज इज एट 92.11 एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.77. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां और 89.6 मिर्ची वन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? जेसीबी से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। Supply.
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: The Mentalist Suhani Shah.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

ये कमाल का गाना जो अभी आपने सुना है कमाल खान की आवाज में, और मुझे पता था आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड वेल, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा तो आप ही कह रहे हो मैसेजेस के थ्रू। देखिए, जब भी ऐसे कोई 90s का गाना सुनती हूँ मैं, स्पेशली ऐसा वाला गाना सलमान खान का, मुझे ना ऐसा लगता है कि वो पुराने जमाने के, मतलब 90s के जमाने की जो इनोसेंस होती है ना, वो वापस आती है। एंड वाई डू वी रिलेट टू इट मोर, बिकॉज 90s में हम भी वो इनोसेंट डेज में ही थे। जैसे प्रिंसन यहाँ पर ये गाने के साथ में, ही सेज दैट इट रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज हाई स्कूल डेज, मास बंकिंग एंड वॉचिंग दिस मूवीज। क्या याद है, याद आ गई आपको प्रिंसन विद दिस सॉन्ग। वेल, विद दिस सॉन्ग लेट मी गो अहेड नाउ, और अब आगे बढ़ना है मुझे और गेम खेलना है आप लोगों के साथ में, है ना। मूड तो बना लिया मैंने आपका अच्छा गाने के साथ में, अब गेम के साथ में भी मूड बना लो, है ना। सो मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खोलने का वक्त आ गया है। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, और आज के मेरे मिस्ट्री बॉक्स में क्या है? आज मेरे मिस्ट्री बॉक्स में कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम हैं, और वो कैसे? देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक मूवी है जिसका मैं स्टार जो है, स्टार कास्ट जो है वो बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड यू हैव टू गेस विच मूवी वेल आई एम टॉकिंग अबाउट। 2001 की ये मूवी है जिसमें माधुरी दीक्षित थी, अनिल कपूर थे, अजय देवगन थे, मनीषा कोइराला थी, रेखा थी, महिमा चौधरी थी, जैकी श्रॉफ थे, सो मैनी पीपल इन वन मूवी। कौन सी मूवी की बात हो रही है यहाँ पर? और फिर उर्मिला मातोंडकर का एक गाना भी था, सो मैनी, राइट? लेट मी रिपीट इट फॉर यू, मैं ये आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है? 2001 की ये मूवी है जिसमें माधुरी दीक्षित थी, अनिल कपूर थे, मनीषा कोइराला थी, रेखा भी थी, महिमा चौधरी भी थी, then I have Ajay Devgan, Jackie Shroff, and also it had a song of Urmila Matondkar in this movie. चलो फटाफट से बताओ 5000196 पर WhatsApp करो, voice message भेजो, या फिर just you can type it out, लेकिन अपने नाम के साथ जरूर भेजिएगा। थोड़ा सा googly फेंकी है मैंने, जो यहाँ पर काफी लोगों ने पकड़ ली है। चलो meanwhile बादशाह तुलसी कुमार की आवाज में अगला गाना enjoy कीजिएगा, माइक से दिल तक आफरीन के साथ, it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
3: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
2: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah.

0: स्टेबिन बैन, जब भी तुम्हारी आवाज में कोई गाना सुनो ना, मुझे तुम्हारी लाइव परफॉर्मेंस ना कतर में याद आती है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज तो आप लोगों के जो आंसर्स आए हैं वो भी वॉइस मैसेजेस इतने सारे आए हैं, वो सुनकर तो बड़ा मजा आया भाई। ऐसा क्या होता है ना कि मैं स्टूडियो में अकेली रहती हूँ, मुझे सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देती है और गाने तो चलते रहते हैं। जब आप लोग वॉइस मैसेज भेजते हो ना तो इट फील्स कम्प्लीट, ऐसा लगता है स्टूडियो में तीन चार लोग और बैठे हैं और हम यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं। सो वेल, किस बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पर गेम चल रहा है हमारा मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। और आज मिस्ट्री बॉक्स में से कुछ एक नई चीज निकली थी। वेल, आज मिस्ट्री बॉक्स से कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम निकले थे एक ऐसी मूवी जो मल्टी स्टारर है, और आपने गेस करनी थी कि यार ये एक्टर एक्ट्रेस के साथ में पहचान कर कि ये मूवी का नाम कौन सा है। सो लेट मी टेल यू द स्टारकास्ट ऑफ दिस मूवी। माधुरी दीक्षित है, अनिल कपूर है, अजय देवगन है, मनीषा कोइराला है, रेखा है, महिमा चौधरी है, जैकी श्रॉफ है, एंड यस, एक मैंने बोनस कहा था कि इसमें उर्मिला मातोंडकर का एक गाना भी है। सच अ बिग स्टार कास्ट है ना। कौन सी मूवी है ये मैं थोड़ी बताऊंगी, ये तो आप बताओगे। हेलो, हाय,
1: द मूवी नेम इज लज्जा।
0: ऑल राइट, दैट इज राइट एस्ट्रिड। वेरी गुड मॉर्निंग। हां, गुड मॉर्निंग।
2: मेरा नाम सलीम है।
0: हाँ सलीम,
2: ये मूवी है लज्जा।
0: All right.
3: Hi, Afreen. Good morning.
0: Good morning.
3: Princeton.
0: Haan, Princeton.
3: The movie name which you mentioned is Lajja.
0: That's right.
3: Yeah. Have a lovely day.
0: You
3: Thank
0: too
3: you.
0: Have a lovely day.
4: Oh, Haan, the name of the movie is Lajja.
0: Bilkul sahi.
4: Directed by none other than Rajkumar Santoshi.
0: That's right.
4: Thank you. Hi, Afreen. Good morning.
0: Hi, good morning. Haan,
4: Vivek. The movie name is Lajja.
0: That is absolutely right. As I said, कि देखा मैंने कहा था आपको कि आज ऐसा लग रहा है कि स्टूडियो में बहुत सारे लोग आए हैं और मैसेजेस बहुत आते हैं, लिख कर भेजते हैं, लेकिन दिस टाइम वी हैड अ लॉट ऑफ वॉइस मैसेजेस कमिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस। और आज तो तालियां बजना बनता है आपके लिए। इट इज इंडीड लज्जा, और लज्जा मूवी का ही अगला गाना जो मैं लेकर आ रही हूँ। व्हाट अ सॉन्ग यार, आई लव द वाइब्स ऑफ द सॉन्ग। अनुराधा श्रीराम की आवाज में ये गाना इतना रेलेवेंट है कि अब भी इस पर काफी सारे रील्स बनते देखती हूँ मैं। एंजॉय दिस मजेदार गाना और मिर्ची।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: I'm joking, mama।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

0: वेल कॉकटेल टू का ये गाना राइटर अभी आपने सुना महमूद राघव चैतन्य की आवाज में और मिर्ची और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:04 की तरफ। यस, और थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि भाई हमारा वीकेंड कितना ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

देखो ये देखकर तो पता लग रहा है कि वीकेंड बड़ा ही प्रॉमिसिंग है हमारे कतर का। देखो मौसम चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन हमारे वीकेंड कतर में ना बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। जैसे इतनी सारी चीजें चल रही है, वेरियस मॉल्स अक्रॉस कतर इज हैविंग द हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल। देखिए ध्यान में रखते हुए कि बाहर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इंडोर इवेंट्स ही किस तरह से है। जैसे लोकल डेट्स फेस्टिवल ईस्टर्न स्क्वायर सुखवाकिफ में, वो भी इंडोर है, एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ है। वेल ये बता दो, ये जो है यहाँ पर जबरदस्त डेट्स मिल रहे हैं, कितने किस्म के डेट्स, 100 से भी ज्यादा किस्म के डेट्स, और ये जो है ये 10th August तक चलने वाला है। वन मोर अट्रैक्शन आई वुड से इज द कलर वर्स एक्सपीरियंस विच इज हैपनिंग एट कतारा कल्चरल विलेज साउथ पार्किंग, और ये तो सितंबर तक चलेगा। तो ये वीकेंड अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप अगले वीकेंड चले जाना, टाइम है काफी। अपार्ट फ्रॉम दैट, कतर टॉय फेस्टिवल के एक्टिवेशंस अब तक के बरकरार है, भले ही टॉय फेस्टिवल खत्म हो गया होगा जो DECC में चल रहा था इफ आई एम राइट, है ना। बट उसके अलावा जो भी मॉल्स में एक्टिवेशंस है वो बरकरार है। देख रहे हो कि हमारा कतर, ये जानते हुए कि भाई गर्मी का मौसम चल रहा है, किस तरह से एंटरटेनमेंट जारी रहनी चाहिए वो बखूबी कर रहा है। सो यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट का डोज चल रहा है 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्र फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
1: तो
2: नहीं होते।
1: थोड़ी ना
2: आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए
2: यहाँ, फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर, काम का टाइम है, आप
3: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

देखो, अगर हमारे कतर का एक सिनोनिम होगा तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल में तो सुकून। अच्छा सच बताओ, कभी नोटिस किया है कि हम किसी शहर या देश की तारीफ करते वक्त कहते हैं ना कि यार वहाँ के रोड्स काफी अच्छे हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स देखिए कितनी खूबसूरत है, लेकिन किसी जगह की असली क्वालिटी तब समझ आती है जब लोग कहते हैं कि हाय वहाँ कितना सुकून है। एंड यू एंड मी माई फ्रेंड्स, वी कैन रिलेट टू इट स्टेइंग इन कतर। ये हमारे कतर का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और इसी सुकून को एक बार फिर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। खबर कुछ ऐसी है कि 2026 ग्लोबल पीस इंडेक्स में कतर को पूरे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के सबसे पीसफुल कंट्री रैंक किया गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के 163 कंट्रीज में से कतर 31st पोजीशन पर आता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है माय फ्रेंड्स। कतर पिछले 12 सालों से यानी 2015 से लगातार मेना रीजन का सबसे पीसफुल कंट्री बना हुआ है। एंड ऑनेस्टली द कंसिस्टेंसी इटसेल्फ सेज दिस इज द एक्चुअल सक्सेस ऑफ दिस कंट्री। और हम इससे ज्यादा रेजोनेट कर पाते हैं, इनफैक्ट ये लग्जरी को हम समझ नहीं पाते हैं जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या रात के 2 बजे फैमिली के साथ लौट रहे, तो ये ख्याल तो कभी नहीं आता है ना हमें कतर में रहते हुए कि यार कुछ गलत भी हो सकता है। नहीं, दिस इज व्हाट इट स्पीक्स वॉल्यूम। कतर इतनी ज्यादा सेफ है। इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है कि आज ही गौरव का कुछ साल पहले वॉलेट एक पार्क में घूम गया था एंड ही गॉट इट बैक। एंड आई एम श्योर वी ऑल हैव सो मेनी सिमिलर स्टोरीज। इफ यू हैव सम स्टोरीज लाइक दिस कि आपकी कोई चीज घूम गई हो, मिल गई हो एंड यू हैव रियल witnessed safety in real terms in Qatar, then please share with me on 5001896. मैं हूँ आफरीन आपके साथ अनमर्जी। It's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: कुमार सानू की आवाज में ये गाना हमने सुना राइट हियर ऑन मिर्ची, साथ देते हुए अलका याग्निक। और जब ऐसे गाने बजते हैं ना तो ऐसा सच में लगता है ना कि वक्त जरा थम थम के गुजर, हम हमारे 90s नॉस्टैल्जिया में खो गए हैं। वी डोंट रियली वांट टू कम आउट ऑफ इट। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और ये खूबसूरत सा गाना चांद की बातें मुझे एक बहुत ही खूबसूरत शायरी याद दिलाई है जो मैं आपको अभी सुनाना चाहूंगी।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, पत्थर की है दुनिया जज्बात नहीं समझती, पत्थर की है दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात नहीं समझती। क्या बात है कितनी अजीब बात है ना। हर मुस्कुराहट के पीछे सुकून हो जरूरी नहीं, और हर खामोशी के पीछे गुस्सा हो ये भी जरूरी नहीं। शायद यही तो होता है कि किसी के इमोशंस को बिन बताए ही समझ लेना। बस अगला गाना भी यही कहता है।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावभाजी.
3: शाबाश. डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11.
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: चोर करता है.
3: शाबाश. लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
4: गांधीयन.
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
4: पीके मेनन.
3: खत्म.
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता. आदमी का नाम राजकुमार राव. रेडियो स्टेशन का मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं. जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े. एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस. है जवानी तो इश्क होना है. स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5. डाउनलोड द ऐप नाउ.
7: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट. 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live.

अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज और एनिमल मूवी का ये गाना राइट योर ऑन मिर्ची, भले ही मूवी चाहे कैसे भी हो, आड़ी टेढ़ी हो, लेकिन यार ये गाना मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट इस मूवी के सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची। और हाँ जी, जाने का वक्त मेरा आ गया है और कल मैं जो आने वाली हूँ एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आने वाली हूँ। जाहिर सी बात है भाई, वीकेंड है हमारा। और देखो, वीकेंड पर ना हमारे पास सोचने के लिए वक्त होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम वीकडेज पर नहीं कर पाते हैं, वो हम वीकेंड पर कर लेते हैं। और इनमें से एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आपने एकदम तुरंत तत्काल के हिसाब से आप टिकट्स बुक कर देनी चाहिए सुहानी शाह के शो की। क्योंकि देखिए, सुहानी शाह पहली बार आ रही है हमारे कतर में, एंड एक ऐसा शो है जो आप अपने बच्चों को भी ले जा सकते हो, है ना, कि मेंटलिस्ट का शो है, इंडिया की नंबर वन मेंटलिस्ट में से मानी जाती है ये, और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में इन्होंने काम किया है। एंड शी इज़ गोना कम हियर एंड रियली लीव यू फ्लैबगास्टेड थ्रू हर ट्रिक्स, थ्रू हर मैजिक एंड थ्रू हर एक्सपीरियंस। ये तो आपको पता चलेगा जब आप खुद ये एक्सपीरियंस करोगे एट QNCC 25th of September। डेट्स देख लिए, बता दिया है मैंने और देख लीजिए, जो है आपको एस सिटी यानी स्नूनू सिटी पर जाकर ये बुक करना है। अब स्नूनू का ऐप तो हम सभी के पास है ही, आप फूड डिलीवरी के लिए यूज़ करते हो, आप सामान भेजने के लिए यूज़ करते हो, तो बस अगर नहीं है तो उसे फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, है ना, सिंपल है बॉस। विद दिस योर यार फॉर द मॉर्निंग, यानी आपकी दोस्त एंड होस्ट आफरीन लेती है अलविदा, टाटा बाय बाय सायोनारा। और ये गाना जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ खास आपके लिए, स्पेशली वो लोग जो मुझे हर रोज सुनते हैं, तू ही यार मेरा, अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाज में। Enjoy it on Mirchi, it's hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल, मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है। मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू, सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: अलका याग्निक ने उदित नारायण की खूबसूरत सी आवाज, गुप्त फिल्म से ये गाना। इन सच कह रही हूँ, मतलब प्यार मुश्किल हो ना हो, लेकिन यार उस प्यार को निभाना कभी कभी जरा ज्यादा मुश्किल होता है, नहीं मुझे ऐसा लगता है। अविंग से दैट मिर्ची कड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:05।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: अब आखिरकार ये बात मैंने कही तो क्यों कही, चलिए इसके पीछे आपको एक वजह बताते हैं। मिर्ची अंशु वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से एक नए दिन की शुरुआत हमारी जिंदगी में हो चली है। अगर आज की तारीख को हम देखने की कोशिश करें तो 5th of August ने ऑलरेडी दस्तक दे ही दी है, मतलब अगस्त का महीना शुरू हुआ है। इसके बाद इतनी खूबसूरत तरह से ये 5 दिन किस तरह से निकले जेन्युइनली पता ही नहीं चला। लेकिन इश्क प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी, रिलेशनशिप्स की बात हो रही थी। आफीन, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी है। मतलब हमने ना कई बार ऐसा सुना है कि जब कोई भी फीलिंग या कोई भी रिलेशनशिप नया नया होता है तो उस समय ना उसे निभाने का तरीका, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका काफ़ी अलग होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है एंड समय निकलते जाता है, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब फीलिंग्स जो है वो इंटैक्ट होती है या किस तरह के चेंजेस आते हैं?
2: वैसे देखो, फीलिंग्स तो इंटैक्ट होती है और शायद वक्त के साथ में और ज़्यादा मजबूत भी होती जाती है और गहरी होती जाती है। लेकिन जैसे तुमने कहा कि एक्सप्रेस करने के तरीके बदल जाते हैं, कि वो जो एक्सप्रेस करने का तरीका पहले ग्रैंड जेस्टर्स में होता था,

दौर में ना जाने कितने सरप्राइजेस दिए जाते थे, कितने रोजेस भेजे जाते थे, एंड ओवर द स्पैन चीज़ें बदलने लगी हैं. लेकिन जिस तरह से आफरीन ने कहा कि रिलेशनशिप में फीलिंग्स वही होती हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने का ज़रिया बदल जाता है, एंड जो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ ले, मैच्योर लव किसे कहते हैं, मैच्योर रिलेशनशिप किसे कहते हैं, शायद उसे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता चली जाए. क्या बात है जी, आज सुबह हमने आपको रिलेशनशिप पे ज्ञान इतना अच्छा दिया कि आपकी ज़िंदगी, शादीशुदा जिंदगी या कोई भी अच्छे रिलेशन की जिंदगी का, यू नो, वो जो राज है वो आप तक पेश कर दिया. थैंक यू जरूर बोलना. चलिए इसके साथ करते हैं मीठी मिर्ची की शुरुआत. अरिजीत सिंह एंड जोनिता गांधी की गजब की आवाज, रणवीर सिंह का तड़का, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी झुमके के साथ आपके बीच लाई जाए. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार।
1: Hello?
2: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या अब आप पागल है क्या?
2: पागल आप है, पागल आप है
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
2: बोली चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया, फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने मेरे साथ जरा प्यार से कह दिए,
2: आज के बाद घर से आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

वेल, कुछ गाने ऐसे होते हैं जब आप टाइम एंड अगेन उन्हें बार बार सुने भी ना, तो भी कहीं ना कहीं आपको सूद करने का काम ये बहुत अच्छी तरह से करते हैं। धड़क टू से ये प्यारा सा गाना, ये बात तो तय है कि मुझे इस गाने से प्रीत 101% है। देखिए, खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको जरूर सुना दिया, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसे एक्सपीरियंस की भी बात मैं इस वक्त आपके बीच करूं जो 101% आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसा नज़ारा लेकर आएगी दैट सडनली विल लीव यू इन ऑ, दैट विल लीव यू मेसमराइज्ड, एंड द सेम टाइम यू कैन बी फॉलिंग इन लव विद द एंटायर एक्सपीरियंस। देखो यार, हम ना अक्सर ये बात सोचा करते हैं कि क्यों ना हमारे अंदर एक ऐसी कोई शक्ति हो, ऐसा कोई पावर हो जिससे हम किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ सकें, समझ सकें, या किसी और के दिमाग की बात तो बहुत दूर की बात है यार। सबसे पहले खुद के दिमाग में क्या चल रहा है हम ये समझ रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है अगर आप ह्यूमन माइंड को देखने की कोशिश करेंगे तो एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 से ज्यादा थॉट्स रन करते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, विद इन 10 सेकेंड से आप सोचें कि आप एक लम्हे में न जाने कितने सारे लोगों के बारे में कितनी सारी बातें सोचते हैं। तो अपने दिमाग को ही समझ पाना, फोकस कर पाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए ये पूरे के पूरे प्रोसेस को, सिनारियों को आपके बीच ना ही सिर्फ एक एंटरटेनिंग मीडियम के जरिए पहुंचाने के लिए बल्कि आपको एक स्पेक्टेकुलर एक्सपीरियंस देने के लिए मिर्ची की टीम जो है ना पूरी तरह से तैयार है। सुहानी शाह, अगर इंडिया की नंबर 1 मेंटलिस्ट की मैं बात करूं तो कतर के इतिहास में पहली बार ये शिरकत करने वाली है। 25th September is the date. Qatar National Convention Center is going to be the venue, and we couldn't be more excited to bring you one of its own kind experience that you would not want to miss at all. So, देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि इस वक्त चल रहे हैं early bird discounts, early bird offers, जहाँ पे आपको 20% discount अवेल हो रहे हैं tickets पर. And ये जो offer है ना, एक बार खत्म हुआ तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आखिरी में आपको tickets जो है मुफ्त में या free में मिल जाएंगे। भैया कितने मुफ्त का माल खाओगे, हजम कैसे होगा? जाइए इस नूनो का एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करिए एंड उसके बाद एस सिटी में जाकर टिकट्स जो है वो बुक करिए। एंड इस वक्त 160 रियाल्स में आपको 2 टिकट्स भी मिल रही हैं, इससे ज्यादा बेहतर सौदा और कहाँ ही मिलेगा। जाओ यार फटाफट टिकट्स जो है बुक कराओ, उसके बाद सुहानी का मैजिक जो है आप और हम मिलकर एक साथ लाइव जियेंगे एंड विटनेस भी करेंगे। एंड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंटरेस्टेड हो, फटाफट से मुझे मैसेज भेजो 5000186 पर, 5000186 for your messages, Instagram Mirchi One Kataria Mirchi Anshu. Meanwhile, Sonu Nigam ki awaaz, Alka Yagnik ka saath, aniye agla power pack gana aapke raaste. Enjoy. Bandi ka naam Anshu.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? जेसीबी से।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
5: द मेंटलिस्ट सुहानीशा।

Samrat and Ninki, a khubsurat si awaaz, and what a lovely track it is from the film Dopati, one of my most favorite tracks featuring Shahir Sheikh and Kriti Sanon. Ye gaana to maine aapko suna diya, lekin chaliye aapke beech is waqt ek khas update bhi pesh kar hi de. Mirchi Anshu. वेलकम बैक. एक बार फिर से अंशु जो है आपके साथ जुड़ चुकी है. देखिए, इतनी बात तो तय है कि मैं जो हूँ ना आपके पक्के वाले वेल विशर में एक ना एक जरूर हूँ. देखिए यार, गर्मी जो है अपनी परम चरम सीमा में 101% पहुंच चुकी है. अगर टेम्परेचर्स को देखने की कोशिश करें तो आंकड़ा जो है ग्रेजुअली 45 के पार ही बताया जा रहा है. लेकिन सच कहूँ यार, ह्यूमिडिटी के चलते मुझे गर्मी कम लेकिन सफोकेशन ज़्यादा फील हो रही है. क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? जेन्युइनली कल मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. आई वॉज अवे, आई वॉज आउट फॉर जस्ट 5 to 10 minutes एंड After 10 minutes, I felt as if कि breathing में काफ़ी तकलीफ हो रही है. एंड ये गर्मी की वजह तो एक तरफ है, गर्मी तो फिर भी बर्दाश्त हो, लेकिन ह्यूमिडिटी बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. अब देखिए, एक बात मैं बहुत ज़्यादा आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूँगी, हम जो हैं बड़े हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना कहीं ना कहीं जानते हैं. खूब अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखें. इनफैक्ट गाड़ी में भी अगर आप बैठे हैं, कभी भी ऐसा कुछ ना हो कि 5-10 मिनट के लिए भी आपने एसी ऑफ करके आप बाहर चले गए और कार में कोई अंदर रह गया है. इन सभी छोटी छोटी बातों का ज़्यादा ख्याल रखना है. लेकिन इससे भी ज़्यादा इस वक्त अगर किसी का ध्यान देना है तो वो हैं घर में छोटे बच्चे. वेकेशंस का टाइम चल रहा है, बच्चे जो है खेल कूद में ऑफन ये बात भूल जाते हैं कि भैया पानी जो है वो पीते रहना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है. इनफैक्ट अगर बाहर भी जाते हैं तो वो खेलने की धुन में कुछ इस तरह से लगे होते हैं कि बाकी सारी बातें जो है ना महसूस नहीं होती. लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, ये बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. तो बस गर्मी के दिनों में सेफ चलना है, ह्यूमिडिटी इस वक्त काफ़ी हाई है, पानी पीते रहना है, हाइड्रेटेड रखना है खुद को. बाकी तो क्या, आपकी कलेजन दिमाग की ठंडक के लिए हम हैं ना जी. टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय. बिंदी का नाम अंशु, शान की आवाज में एक शानदार सा गाना आपको याद दिला दे. भूल जा टाइटल है लेकिन गाना बड़ा याद करने लायक है. एंजॉय.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है। अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
2: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people. It's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतली नहीं हो रहा। तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क। हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी।
1: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है। It is very easy to troll, but it's not easy to go to the gym. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now. Man.

0: Well, Jubin Nautiyal ki khubsurat si awaaz, and what a soulful track it is from the film Dhurandhar the Revenge. Bhai, ye gaana jo hai na kahin kamaal asar chhodta hai. And kya shabd likhe yaar, Rashad Kamil ki khubsurat se alfaz, and is gaane ko, in fact, is film ka music agar kisi ne direct kiya to wo hai Shashwat Sachdev, another masterpiece. Chali ji, ye pyara sa gaana to maine aapko suna diya, ab koi khubsurat si baat bhi aapke beech pesh ki jaye. यार देखो, मैं जो हूँ ना कहीं अपनी लाइफ को फिल्मों से काफ़ी हद तक रिलेट करती हूँ, क्योंकि किसी ना किसी फिल्म ने ज़िंदगी के किसी ना किसी दौर में ऐसा कोई असर ज़रूर छोड़ा है जिसके बाद लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म होती हुई ज़रूर नज़र आई है. एंड कुछ बातें ऐसी होती हैं फिल्म के, कुछ ऐसे खास डायलॉग्स होते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में ना कहीं बहुत बड़ा असर छोड़ते हैं. चलिए आज एक काम करते हैं, एक बार फिर से आपके बीच मैं एक खूबसूरत सा डायलॉग जो है वो पेश करूँगी. आपको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड बस मुझे ये बताना है कि ये है तो है किस फिल्म से. एंड अगर पहचान आ जाए तो करेक्ट आंसर एज यूजुअल दे देना, लेकिन कहाँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896 5000 1896. वी विल गेट कनेक्टेड देन. इंस्टाग्राम मिर्ची वन का तरह मिर्ची अंशु, एंड आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज. हियर वी गो.
1: जिग्सो पजल की तरह है, ये ना वो पजल जब हम बचपन में खेलते थे, तो मेरे जैसे लोग उस पजल के खोए हुए टुकड़े पीसेस सिर्फ ढूंढने और जोड़ने में मदद कर सकते हैं. ओनली यू कैन कंप्लीट द पजल.
0: एक बार फिर से.
1: जिंदगी एक जिग्सो पजल की तरह है, ये ना वो पजल जब हम बचपन में खेलते थे, तो मेरे जैसे लोग उस पजल के खोए हुए टुकड़े पीसेस सिर्फ ढूंढने और जोड़ने में मदद कर सकते हैं.
0: क्या बात है यार, कितनी खूबसूरत सी बात. आप इस बात को, इस फिल्म को आइडेंटिफाई करेंगे ये तो बिल्कुल आपका काम है, लेकिन अगर इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करें तो यार इससे ना एक अलग इंप्रेशन छोड़ा हुआ है. अभी क्या है इसका एनालिसिस भी आपसे कुछ देर में ही किया जाएगा. फटाफट से बताएं कि आवाज़ है तो है किस शख्सियत की, एंड ये कॉन्वर्सेशन किन दो लोगों के बीच चल रही है, साथ ही किस फिल्म से. 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो बाइट. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: Well, Mohit Chauhan and Tarannum Malik ki ek khubsurat si awaaz, and what a lovely track it is. The title track of film sahi aa raha hai. Ye to maine aapko suna diya, lekin jis baat pe baat chhiri thi use complete kar li jaye. Mirchi Anshu. Well, कुछ बातें आपकी जिंदगी में ऐसा गहरा असर छोड़ती हैं कि जब आप एक बार दोबारा उन्हें सुने ना, तब लगता है यार हाँ, ये जो है जिंदगी को मुकम्मल करने में बहुत बड़ा काम कर सकता है. कई बार एक बार सुनने में कोई बात खास लगे ना, लेकिन जब दोबारा आप सुनते हैं, रिपीट उसे करते हैं, तो उसका एसेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगता है. एंड ऐसा ही कोई काम इस फिल्म के सारे डायलॉग्स ने हमारे साथ किया था. मतलब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश किया था बॉलीवुड का एक बहुत ही खूबसूरत सा डायलॉग, जिसको सुनकर एनालाइज कर आपको बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से. एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, मैं जल्दी से एक बार फिर से सुनाती हूँ. अभी भी अगर आपने इसे आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे करेक्ट आंसर सुनते सुनते भेज देना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000 1896. वी विल गेट कनेक्टेड देयर, बट फॉर नाउ हियर वी गो.
1: जिंदगी एक जिग्सो पजल की तरह है, वो पजल जब हम बचपन में खेलते थे तो मेरे जैसे लोग उस पजल के खोए हुए टुकड़े पीसेस सिर्फ ढूंढने और जोड़ने में मदद कर सकते हैं.
0: क्या बात है यार, क्या खूब बात है. लेकिन जिस तरह से आप सबने रिप्लाई किया है वो और भी ज्यादा खूब है. जरा देखिए लोगों का क्या कहना है कि है तो है किस फिल्म से. थैंक यू सो वेरी मच. वेल, ये आवाज है उषा नगरानी जी की. इसके अलावा यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच. डिम्पल, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई. पवन, रियली अप्रिशिएटेड. अब्दुल, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. एवरी सिंगल पर्सन हैव रिस्पॉन्डेड, वी ट्रूली ट्रूली वैल्यू एंड अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स. यार आपके बगैर तो मेरा शो क्या, मैं ही पूरी तरह से अधूरी हूँ. बिल्कुल, अगर इस फिल्म की मैं बात करूँ तो फिल्म का नाम है डियर जिंदगी. एक ऐसी फिल्म जो रिलीज हुई नवंबर 2016 में. एंड इस फिल्म में अगर आपको कोई नजर आए तो वो है आलिया भट्ट एस कायरा, एंड इसके साथ शाहरुख खान एस डॉक्टर जहांगीर खान, यानी कि डॉक्टर जग. हाय, कोई जग जो है इतना खूबसूरत एंड प्यारा कैसे हो सकता है. इस फिल्म को बाद मुझे ये फीलिंग आई थी. चलिए जी, अगर इस फिल्म की पूरी कहानी को देखने की कोशिश करूं, गौरी शिंदे ने ना ही सिर्फ इस फिल्म को बहुत ही खूबसूरत तरह से लिखा बल्कि इसे डायरेक्ट भी किया एंड इसे प्रोड्यूस किया गौरी खान, करण जौहर एंड गौरी शिंदे ने. एंड खासकर अगर आप इस कॉन्वर्सेशन की अगर बात करें, लाइफ शो नायर एक्चुअली एक पजल की तरह है. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने अपने ओपिनियंस एंड थॉट्स के साथ हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं. कईयों की बातें हमें अच्छी लगती है, कईयों की बातें हमें कम पसंद आती हैं, लेकिन बात इतनी है कि इवेंचुअली हमारी ज़िंदगी का ये पज़ल किस तरह से कम्प्लीट होगा ये हमारे हाथ में है यार. मुझे लगता है कि पज़ल को कन्फ्यूज़ करने में लाइफ में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का होता है ना, तो वो एक्सपेक्टेशंस का. मतलब इंसान की एक फितरत होती है कि हर किसी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करें, ये जायज़ है, नेचुरल है. लेकिन सबसे बड़ा दुख का जरिया एंड रीज़न कुछ है ना यार, तो वो एक्सपेक्टेशंस. कभी कभी जब हम इससे कम करते हैं ना, खुद से नहीं औरों से, कभी कभी जब जिंदगी में यहाँ पर एक लगाम लगाते हैं ना, लाइफ की जो पज़ल है ना, काफ़ी आसानी से सॉल्व होती है. अभी छोटी सी बात है लेकिन बड़े पते की है. गॉड फरमाना. एंड अगर बात अच्छी लगी तो मुझे एक थैंक यू मैसेज जरूर भेजना. 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु. मीनवाइल एक काम करती हूँ, आपको इसी फिल्म से एक प्यारा सा गाना जो है वो सुना दिया जाए. क्या कहती है पब्लिक? यार जिंदगी को प्यार से जीने का, मस्ती से जीने का, एंड हर पल को दिल से एंजॉय करने का जीने का. अपना फंडा जो है बड़ा क्लियर है एंड बड़ा सिंपल है. जस्लीन रॉयल एंड ये गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु.

0: Nici.
1: Iscabana, puscabana, sacabana, rabana, murga, murga, la vieta la murga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार। सारे दिमाग
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब?
2: नहीं,
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बल सच कहूं यार, जिंदगी में ना जुनून होना बेहद जरूरी है। मिर्ची अंशु। पता है मेरे पापा ना अक्सर मुझसे एक बात कहा करते थे। वो कहते थे कि लाइफ में जब भी तुम कुछ करने की कोशिश करो या कुछ पाने की चाह करो ना, तो सबसे पहले बेहद ज़रूरी बात यह है कि तुम्हारे अंदर वो एक डिज़ायर हो, यू नो, वो एक एक्सट्रीम फीलिंग हो जो तुम्हें उस डायरेक्शन में पुश करे, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर लेकर जाती है। जब तक तुम्हारे अंदर किसी चीज़ को पाने की चाह नहीं है ना, चाहे वो कोई शख्स हो, कोई मुकाम हो, कोई मंजिल हो, कोई चीज़ हो, तब तक तुम अपना 100% दे नहीं सकते। एंड जिस दिन वो चाह आ गई ना, एंड साथ में ऑनेस्टी आ गई, सच्चाई आ गई, तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन होता है ना भाई, ये किकास कॉम्बिनेशन है। उसके बाद जितने भी हमने बड़े बड़े टर्म्स लाइफ में सुने ना, चाहे डेडिकेशन की बात करें, डिटर्मिनेशन की बात करें, परसीवरेंस की बात करें, यू नो, ये सारी चीज़ें अपने आप आती हैं, क्योंकि वो सच्चाई आपकी मेहनत की एंड साथ ही वो चाह यानी कि वो डिज़ायर, ये सारी बातों को अपने साथ लेकर आती है। एंड जब तक लाइफ में एक पर्पस नहीं है ना, एक मिशन नहीं है, एक विजन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल नहीं है। मतलब एक ज़िंदगी मिलती है, ज़रा सोचिए उस ज़िंदगी में ऐसा कोई ख्वाब हो, ऐसा कोई सपना हो जो हर दिन आपको उठने में मजबूर करे ना, सुकून की नींद दे, लेकिन जब आप सुबह उठें तो वो खुशी से उठें, अपने आप वो आँखें खुले, जिसके लिए आपके किसी अलार्म को स्नूज में डालना ना पड़े। अगर लाइफ में ऐसा कोई पर्पस है ना भाई, जो आंखों को अपने आप सुबह सुबह खोल दे, तो समझ जाओ तुम जो हो बड़ी सही रास्ते में चल रहे हो। अब एक बात बताएं, क्या लाइफ में कभी किसी मोड़ में, किसी फेज में, आज की डेट में आपके अंदर ऐसी कोई चाह है, ये रही है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई शख्स, कोई मंजिल या मुकाम? 5000186 ईगली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम Mirchi1 कतरिया मिर्ची अंशु, मीनवाइल अक्षत की आवाज़, यानी अगला प्यारा सा गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।
2: Guess.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: निधि मोहन की खूबसूरत सी प्यारी सी आवाज, फिल्म का नाम गंगूबाई काठियावाड़ी एंड मेरी जान। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन दूसरी काम की बात भी आप तक पेश कर ही दी जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: वल, देखो बात इतनी है कि कुछ ना कुछ खास इस वक्त आपकी हमारी जिंदगी में ना जरूर हो रहा है। एंड देखो मौका है, दस्तूर है, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इससे पहले कि हाथ से निकल जाए, क्यों ना इसे फटाफट से हथियार लिया जाए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कतर में चल रहा है एक बहुत ही प्यारा सा एग्जीबिशन, लोकल डेट्स एग्जीबिशन। पता है जब भी मैं कोई लोकल प्रोडक्ट्स की बात करूँ ना, तो मेरा सबसे पहले ध्यान अगर कहीं जाता है तो बचपन के दिनों की उस सब्जी मंडी में, जब हर संडे मैं अपनी मम्मी के साथ सुबह सुबह सब्जी मंडी पहुँचा करती थी। पूरे के पूरे लोकल फार्मर्स जो हैं अपने ढेर सारे सामाना लेकर आते थे। एंड संडे का बाजार जो है सबसे बड़ा लगता था भाई, क्या गजब की फ्रेश ताज़ी सब्जियां। मतलब आप जब उनके पास से भी गुजरे ना, तो उनकी महक, उनकी खुशबू इतनी फ्रेश होती थी कि घर में रोज टिंडा बने तो भी मैं खा लूं, ये वाली फीलिंग जो है ना उस महक से, उस खुशबू से बस आ ही जाता था। लोकल प्रोडक्ट्स का कमाल और मजा ही कुछ और है यार। एंड यू नो वो बार्गेनिंग करने का अलग मजा, मतलब भैया अगर 5 रुपए की सब्जी बोले तो उसमें भले 50 पैसे का डिस्काउंट मिले, लेकिन जरूर मिले। एंड उसमें इतनी तसल्ली मिल जाती थी कि बताएं तो क्या ही बताएं। चलिए जी, सब्जियां तो क्या, लेकिन हाँ लोकल डेट्स जो हैं, खजूर जो हैं, हुजूर इस वक्त आपकी जिंदगी में हम जरूर लेकर आएंगे। आपको अगर कहीं पहुंचना है तो वो है सुख वाकिफ, वहां का ईस्टर्न स्क्वायर, जहां पे प्रॉपर एसी टेंट के अंदर अगर आप कुछ देख पाएंगे तो ढेर सारे लोकल डेट्स, बहुत सारी वेराइटीज एंड उनसे बने हुए बहुत सारे डिशेज। लेकिन हाँ, यहाँ पे बार्गेनिंग का सिलसिला शुरू ना करियो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इंश्योर किया है ये प्राइसिंग जो है एकदम सही रहे एंड सब वेंडर्स के पास सेम रहे। जाइए इस अच्छे से इवेंट को एंजॉय करके आइए, अंटिल 10th of August ही आपकी लाइफ में है। बाद में ये मत कहना डेट निकल गई, हम डेट्स एग्जीबिशन ना जा पाए। अरिजीत सिंह की आवाज, शाश्वत सचदेव सिंह का साथ है, नहीं अगला प्यारा सा गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi. It's hot.
1: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
2: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देखे लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
1: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

यार मुझे एक बात लगती है कि अगर किसी के पास ये हुनर हो कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को पकड़ सके, तो सबसे पहले दुनिया में किस किरदार की वाट लगेगी, जरा सोचें। मिर्ची अंशु यार अब की बार तो बात तय है कि हस्बैंड से ज्यादा वाइफ्स की वाट लगने वाली है, क्योंकि अगर हस्बैंड ये बात को एनालाइज कर ले कि उसकी बीवी के दिमाग में क्या चल रहा है ना, अकॉर्डिंगली एक्ट करने लगे, तो क्या ना हमारे पास लड़ाई करने की कोई वजह बचे ना। एंड जब तक ये हम ना करें हमारा खाना हजम हो तो कैसे हो? अंशु आपसे यही कहना चाह रही है कि 25th ऑफ सितंबर को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में कुछ ऐसा ही होने वाला है। वेल इंडिया की लेजेंडरी मेंटलिस्ट सुहानी शाह आ रही हैं दोहा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड ये कोई सिर्फ मैजिक शो नहीं है, ये सिर्फ एल्यूशन भी नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके बाद आप बस एक ही बात बोलेंगे, भाई ये किया कैसे, सिखा के जाओ प्लीज। इस वक्त अगर आप देखने की कोशिश करें तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स ऑन गोइंग है, जिसके चलते 20% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं ऑन योर टिकट्स बुकिंग। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से स्नूरो एप्लीकेशन को अपने फोन पर डाउनलोड करें, एस सिटी विजिट करें एंड अपनी टिकट्स जल्दी से सिक्योर करें। इनफैक्ट 160 रियाल्स में आपको 2 टिकट्स भी मिल रही हैं, भाई गजब फायदे का सौदा है, बाद में कहना मत मेरे दिमाग में तो था जाने का। आ रही है वो आपके दिमाग के हाल को पहले से जानती है। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।

0: सिद्धार्थ बसरूर की खूबसूरत सी आवाज में व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। भाई एक बार फिर से मदहोशी जो है गानों के जरिए हमारी जिंदगी में आनी शुरू हो चुकी है। चलिए जी, ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन मदहोश करने वाली कोई दूसरी बात भी आप तक पहुंचा दी जाए।
1: मिर्ची अंशु।
0: वेल, सच कह रही हूँ, जब जब बचपन के वो दिन याद आते हैं ना कहीं यादें जो है मदहोश कर ही जाती हैं। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है यार कि बचपन के दिनों में ना हमारे पास एक गुल्लक हुआ करता था जो हर साल हमें मिलता था दिवाली के ओकेजन पर। अब काम एक ही होता था कि साल भर के हर एक दिन में जितने भी पैसे हमने बटोरे इकट्ठे किए हैं वो पाई पाई जमा किया हुआ पैसा उस गुल्लक में बस डालते ही जानना है। एंड सच कह रही यार, जैसे जैसे उस गुल्लक के खनकने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती थी ना यार, खुशी बड़ी होती थी। लेकिन उसमें ना हमारा एक और अभियान होता था कि किस तरह से वो पतली सी डंडी डालकर अपने नहीं बाजू वाले के गुल्लक से एक आध दो सिक्का जो है वो एक्स्ट्रा निकाल ही लिया जाए, क्योंकि पता होता था कि कहीं ना कहीं इसने कुछ एक्स्ट्रा हाथ मार कर अपने गुल्लक में पैसे जो है ज़्यादा डाले होंगे। लेकिन फाइनली जब वो मिट्टी का गुल्लक दिवाली के एक रोज पहले फूटता था ना, उसके अंदर से ढेर सारे पैसे निकलते थे ना, आई वो जो खुशी है ना उसे शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। एंड अब फाइनली ये डिसाइड होता था कि उस पैसे का करना है तो क्या करना है। एंड हम बच्चे जो है ना काफ़ी कमाल हुआ करते थे, ख्वाहिशें सिर्फ अपने तक लिमिट नहीं थी, ये होती थी कि घर के हर एक मेम्बर को कैसे खुश करना है, इवेंचुअली उन्हीं से तो सब कुछ लिया है। ना जाने क्यों बड़े होते होते हम जो हैं कई दफ़ा ये बात भूल जाते हैं कि जिन लोगों से इतना कुछ सीखा है, जिन लोगों से इतना कुछ पाया है, चाहे ज़िंदगी में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनसे कुछ करे ना करे यार सबसे बड़ा तोहफा अगर दे सकते हैं ना तो वह है अपना वक्त। चलिए अगर लगे उससे ज़्यादा कुछ देना है तो भाई अच्छा खासा एक्सचेंज रेट चल रहा है, क्यों ना घर वालों को ज़रा पैसा भेज, खुशी जो है चौगनी कर दें। देखते हैं आज का पैसा आई पे मनी में क्या ही बोलता है। वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.09 एंड साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.30, नेपाली रुपीस की अगर हम बात करें सो इट इज 41.64 एंड साथ ही अगर मैं लंकन रुपीस की बात करूं तो भाई साहब ये है 92.06 एंड बांग्लादेशी टाका इज एट 33.97। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट करेंसी एक्सचेंज इज ब्रॉट टू यू बाई

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vizba la burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: तो आप, मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है, आप
3: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, 2 लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स, है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5, डाउनलोड द ऐप नाउ। घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे, TNC अप्लाई।
6: It's all down to Danny, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
3: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: The mentalist Suhani Shah live.

Well, Javed Ali ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is, bhai. Kya super trending gaana. Ye unhi gaano mein se ek hai jisne reels ki bahar aur baadh dono hi na social media mein zaroor lekar aaya. Mirchi Anshu. यार सच कहूँ अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त जो है पिछले कुछ सालों में कितना बदल सा गया ना. इनफैक्ट अगर आप हर एक जनरेशन को देखने की कोशिश करें, हर एक डेकेड को ही अगर आप देखने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि कितना बड़ा चेंज आया है. लेकिन स्पेसिफिकली अपने चाइल्डहुड डेज को जब मैं देखती हूँ, स्कूल एंड कॉलेज के वक्त को देखती हूँ, आज के दौर को देखती हूँ, लगता है कितनी सारी बातें, कितनी सारी चीज़ें बदली हैं. कनेक्टिविटी का मीडियम, एडवर्टाइजमेंट का मीडियम, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस की दुनिया, सब कुछ बदल गया यार. हम बचपन के दिनों में सबसे ज़्यादा अगर किसी बात से कनेक्टेड हुआ करते थे सो दैट यूज़ टू बी अखबार, स्पेसिफिकली मी. द रीज़न भी मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. मेरे मॉम एंड डैड दोनों के दोनों प्रोफेसर हुआ करते थे. एंड इनफैक्ट पापा की अगर बात करूँ सो ही वाज मास्टर्स इन 12 सब्जेक्ट्स, PhD, LLB. मम्मी भी 6 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स थी. तो ना हमारे यहाँ एक रूल होता था कि सुबह उठते ही साथ सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो अखबार न्यूज़पेपर में दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो की हेडलाइंस पढ़नी है एंड उसके अलावा जो एडिटोरियल यानी कि संपादकीय जो पेज होता है उसके मैक्सिमम कॉलम्स हम मम्मी पापा के साथ बैठ के पढ़ा करते थे एंड साथ में उसका एनालिसिस होता था. एंड दैट्स हाउ आई डेवलप्ड माय कीन इंटरेस्ट टुवर्ड्स बुक्स, रीडिंग एंड लर्निंग. लेकिन वो फेज जब अखबारों में सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट का भी जरिया एंड मीडियम होता था एंड आज का दौर, मुझे याद नहीं कि कब लास्ट टाइम मैंने फिज़िकल न्यूज़पेपर जेन्युइनली अपने हाथ में उठाया हो. हाँ आज भी मैं अखबार पढ़ती हूँ लेकिन सबकी सब चीज़ें जो होती हैं वो डिजिटली होती हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए होती हैं. माना कि कन्वीनियंस जो है वो काफ़ी बढ़ा है लेकिन पता है एक बात मुझे आज भी लगती है कि वो जो पेपर की खुशबू, वो टच, वो फीलिंग हाथ में पकड़ कर वो जो पढ़ने का एहसास था ना यार, वो आज की डेट में कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है. आज के डेट का अपना अलग एडवांटेज है. इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ वो एक अखबार तक सीमित नहीं है, उससे बियॉन्ड भी ना जाने कितनी चीज़ें हमें इंस्टेंटली पढ़ने सीखने को मिलती हैं. लेकिन सब कुछ बदल गया यार. चलिए मैं आपसे एक बात पूछने की कोशिश करती हूँ, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड वर्ल्ड की दुनिया आपको आज के डेट में ज़्यादा अपीलिंग लगती है या कहीं ना कहीं वो जद्दोजहद की दुनिया आपको ज़्यादा अच्छी लगती थी जब किसी भी चीज़ को पाने के लिए कोई ना कोई मेहनत जो है, एक कदम जो है हमें ज़रूर उठाना पड़ता था, कोशिश करनी पड़ती थी. 5000 1896. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम. Mirchi1 कतरिया Mirchi Anshu. मीनवाइल आमिर खान ने अलका याग्निक की आवाज़ में अगला प्यारा सा गाना आप तक पहुँचाएं. एन्जॉय. बिंदी का नाम अंशु.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: मिर्ची स्टोरीज,
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
4: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? जेसीबी से।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

0: यार इतना ही कहना चाहूंगी, ये जो बंदी है ना, चलती फिरती लाई डिटेक्टर मशीन है।
1: मिर्ची अंशु
0: I'm pretty sure अंशु की इस बात से आप जरूर अग्री करेंगे कि लाइफ की किसी ना किसी फेस में आपको भी ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा किसी ना किसी शख्स को लेकर, कि कुछ हो ना हो बस मुझे इतना पता चल जाए कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। कभी टीचर्स को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, फ्रेंड्स फैमिली रिलेशनशिप्स को लेकर, हस्बैंड वाइफ के दिमाग में तो ये अक्सर आता है कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, ये मुझे आज तक कभी समझ ना आया। लेकिन यार ये हुनर एक ऐसी बंदी के पास है जिसने दुनिया के सारे असंभव को संभव बना दिया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट भारत की मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह। एंड सबसे खास बात, अपने गजब के कारनामे दिखाने, ये मैजिकल एक्सपीरियंस देने हमें कतर आ रही है ऑन 25th ऑफ सितंबर एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। एंड इस वक्त चल रहा है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, अर्ली बर्ड ऑफर, जहां पर टिकट्स बुकिंग पे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। इनफैक्ट 160 में आप 2 tickets भी अवेल कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से स्नूनो एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करना है और एस सिटी को विजिट कर टिकट्स जो है सिक्योर करनी है। बिलीव मी, दिस इज समथिंग दैट यू वुड नॉट वांट टू मिस एट ऑल। एंड सुहानी के बारे में
2: चारों खाने चित कर देगी।

हाँ यही कहा जा सकता है। तो बस आइए ये धाकड़ एक्सपीरियंस आप और हम मिलकर लाइव विटनेस करेंगे। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
3: मैं करूँ?
4: आप करोगे?
3: नहीं, मैं करवाता मतलब मेरा होता है
4: तो वो तो पता है मेरा बस चलता है एक-एक को घुसन मार के आती हूँ।
3: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड?
2: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

0: वेल बेनी दयाल एंड शमाली खुलगड़े की पावर पैक आवाज, एंड अगर लत लगने की बात करूं तो ये बात तो तय है कि जिंदगी में जिस तरह से आपको ना हमारी लत लगी हुई है, हमको आपकी है, लेकिन इस वक्त कुछ और भी है।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, ये जो लत है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है। अब इस लत के चक्कर में ना जाने कितनों को लाते भी पड़ी है वो बात जो है काफी अलग है। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना ऑब्सेशन या लत कहें किसी भी चीज की, ये एक लिमिट तक हो तो ही सही है। देखिए, अगर आप कहते हैं ना कि आप किसी मंजिल को पाना चाहते हैं, मुकाम की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए उसकी लत लगनी जरूरी है, भैया ऑब्सेशन तो होना जरूरी है, लेकिन ये ऑब्सेशन कुछ इस हद तक भी ना हो कि जिंदगी के बाकी सारे मायने ये आपको भुला दे। क्योंकि जब आप ये करने लगते हैं, जब आप बाकी पहलुओं से डिस्कनेक्टेड होने लगते हैं, तो एक पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं कोई भी फीलिंग आपके लिए ना मोनोटनी में कन्वर्ट हो, इस बात में देर नहीं लगती। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर लत जो है सही तरह से, सही डायरेक्शन में, सही वक्त में किसी चीज की लग जाए ना भाई, तो जिंदगी को बनने में भी देर नहीं लगती। देखिए ना, इन दिनों मैं पेरेंटिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ने की बहुत बड़ी लत है, मैं ये बात कह सकती हूँ। जितने भी लोग मुझे रेगुलरली सुनते हैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जितनी भी किताबें पढ़ती हूँ कहीं ना कहीं उनके कुछ अच्छे पॉइंट्स मैं आए दिन आप सबके बीच पेश करती जाती हूँ। सो देयर इज दिस बुक अबाउट पेरेंटिंग, जिसमें बहुत खूबसूरत सी बात कही गई है कि यार माँ बाप का फ़र्ज जो है ना, सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को अच्छे कपड़े दें, अच्छा एजुकेशन दें, उनको अच्छा खाना दें, भाई पेरेंटिंग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सलीका है। सबसे ज़रूरी बात अगर आज के रेट में कुछ है तो वो है कि बच्चों की नेसेसिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ को जहाँ पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप उनके साथ वक्त बिताएं। वक्त बिताने का मतलब उनके साथ सिर्फ उन्हें पढ़ाना या उन्हें कहीं छोड़ना लाना नहीं होता। यार व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आप इतनी जेन्युइनली अपने बच्चे के साथ बैठकर 30 मिनट्स बिना किसी सेलफोन के, बिना किसी दूसरे एक्टिविटी के हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन किया? ज़रा एक बात बताएं, जब हम एज पेरेंट्स इन सब बातों को पूरा नहीं कर पाते ना, तभी बच्चों की ज़िंदगी में किसी और चीज़ की लत लगती है। और इस बात को इस वक्त समझना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी बात है लेकिन गहरी बात है, ज़रा गौर फरमाइएगा। चलिए जी, इसी थॉट के साथ अभी फ़िलहाल मैं निकलती हूँ, मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट बंदीगराम अंशु मासलाम हबीबी।
2: Oh my God, this is original.

0: सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी इंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानचूक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिड़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। कसी जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपके 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirchi, burga.
2: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
3: जी बोल रहा हूँ।
2: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
3: कहाँ ना सर?
2: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
3: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
2: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
3: मैं दे दूंगा।
2: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
3: 4 यूनिट?
2: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ, ब्लड नहीं
3: चाहिए
2: इसको। यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
3: क्या चढ़ाना है?
2: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
3: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना
2: है? मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
3: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
2: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल
3: गया सर, इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
3: जी, जी
2: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
3: अच्छा,
2: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
3: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
2: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
3: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
2: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
3: जी
2: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
3: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटा।
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाई छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, 2 लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केयर्स। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
7: इट्स ऑल डाउन टू धोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: रात में कपड़े प्रेस करके बैग जमा के सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं वो मेरा ध्यान भी ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है, हाँ ये इंसान जो है ना ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। So, जो कहां की चीज कहां जोड़ के हम इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन है क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। और हाँ, ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते हैं। इनफैक्ट पता है, आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपने रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड, जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Snoo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं. नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था. इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी. हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था. तब बड़ा जोर आता था, लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार. हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीख ली थी. टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार. और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे. बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. On Mirchi, it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। What is this obsession with a hat?
3: This hat has been attached with me for a long time. I'm a hat guy. I feel it's my security blanket or a bad hat, which I'm not too sure how bad my hair is looking right now. But I like hats. It kind of makes me secure. It makes me happy.
2: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। You're listening to Mirchi. It's hat. Hot.
0: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं एक कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: I'm joking, mama।

0: ये जादू नहीं है तो और क्या है यार, मतलब वाकई में छोटी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं, लेकिन ये जो छोटी रातें लंबी होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में नहीं होती हैं, ये एक्साइटमेंट में भी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ट्रैवल करना होता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है ना, तो अगली सुबह के चक्कर में हम रात भर नहीं सो पा रहे होते हैं और वो रात जो है वो अपने आप लंबी हो जाती है। या तो एक्साइटमेंट होता है या तो एंजाइटी होती है, और मुझे तो कभी कभी दोनों ही होता है, और उस चक्कर में मेरी भी छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मुझे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, आई एम नॉट कैचिंग फीलिंग्स, आई एम जस्ट अबाउट टू कैच अ फ्लाइट। दैट्स द रीजन कि मेरी छोटी रात लंबी हो गई है।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान, दो गानों के मिक्सेस को आपके लिए चला देती हूँ, आपको सुना देती हूँ, और आपको बताना होता है कि ये जो दो धुनें आपने सुनी कौन से गानों की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं। बस जी, अब आपको डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि इन दो गानों के नाम क्या हैं। और स्टे ट्यून रहिएगा विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La
1: fiesta la burga. Mirchi, burga. हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार?
1: Hello?
2: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अब गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने Hello? माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या अब आप पागल हैं क्या?
2: पागल आप है, पागल आप
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। हैं, किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दिए।
2: आज के बाद घर से आ रही ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: No Entry, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम तो No Entry था, लेकिन सबको इस फिल्म को देखने के लिए एंट्री चाहिए थी।
0: मिर्ची, VCR.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म इतनी मजाकिया और इतनी मजेदार थी ना, मतलब जिंदगी में कुछ भी बवाल चल रहा हो, इस फिल्म को देखते देखते सबने अपनी हंसी निकाली और उस बवाल को उस हंसी में उड़ा दिया है। लेकिन आपको इस फिल्म में वो वाला सीन तो डेफिनेटली याद होगा जहाँ पर फरदीन खान, अनिल कपूर एंड सलमान खान एक ही क्लिप से लटक गए थे एक के बाद एक। ओरे बाप रे बाप, मतलब दिस सीन इज अ मिक्स ऑफ एंजाइटी एंड ह्यूमर। मुझे भी एंजाइटी हो रही थी इस चीज को लेकर कि ये कहीं गिर ना जाए यार, और ह्यूमर भी इतना था यार इस सीन के अंदर कि थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने के बाद मैं हंसने लग जाया करती थी कि यार ये क्या ही कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स की बात ये है कि ये सीन जितना मजाकिया देखने में लग रहा था ना, उतना शूट करने में मजाकिया नहीं था, बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी टफ सीन टू शूट, क्योंकि इनको वाकई में ये सीन एक क्लिप से लटकते हुए शूट करना पड़ रहा था। एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए रिग केबल्स अटैच करनी जरूरी थी, बिकॉज वो जो टेरेन था वो बड़ा स्टीप था। अब ये सारे सीन्स शूट करने के बाद ये जब सीन निकल के आया तो भाई फुल पैसा वसूल था ये सीन। और एक मजे की बात सुनो, ये जो सीन जिस स्पॉट पे शूट हुआ था ना फुकेट में, जहां पर ये तीनों के तीनों एक क्लिफ से लटके हुए थे, इस फिल्म के बाद और इस फिल्म की सक्सेस के बाद इस सीन का नाम ही नो एंट्री स्पॉट रख दिया गया था, अंटिल अ सुनामी वॉश दैट स्पॉट अवे। हाँ, वो स्पॉट कभी हुआ करता था मगर आज नहीं। मगर हाँ, इस स्पॉट को आज भी हम फिल्म में जरूर देख सकते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? जेसीबी से।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सल्लू भाई के डोले तो बड़े है ही हैं, साथ ही साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा है यार।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And जब No Entry the movie was being shot ना, at that time, Anil Kapoor of course was the main lead of the film, everybody knew. लेकिन फिर भी सलमान खान ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ करी, because जब बोनी कपूर ने उनको ये स्क्रिप्ट दिखाई, तो सलमान खान को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहे थे। और जबकि उनका रोल छोटा था, फिर भी उन्होंने अपने इस रोल को निभाने के लिए मुझसे शादी करोगी की शूट एंड नो एंट्री की शूट में बहुत जागल किया। मतलब कभी वो यहाँ होते थे, कभी वो उस सेट पे हुआ करते थे। एंड इन फैक्ट जो क्रू थी इस फिल्म की, वो भी हमेशा ऐसी रहती थी कि यार कभी भी सल्लू भाई आ सकते हैं अपनी शूट करने के लिए, अपनी शूट कंप्लीट करने के लिए, उनको जहां मौका मिलेगा वो आ जाएंगे। तो वो हमेशा स्टैंड बाय पे रहा करते थे। इन फैक्ट सलमान खान वॉज द वन, जब नो एंट्री की शूट के डिलेज हो रहे थे, तो उन्होंने बोनी कपूर को कहा कि यार पैसों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना काम और अपनी फिल्म खत्म करने के बारे में बात करो, और पैसा वैसा जो भी है ना वो हम देख लेंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत थी, वो उस वक्त सलमान खान ने बोनी कपूर को जरूर दिया था। वहीं अगर बात की जाए फरदीन खान की, तो ये बड़ी मजेदार वाली चीज है यार। मतलब फरदीन खान को कास्ट तो कर लिया था मूवी के लिए, लेकिन जब इनिशियल शूट्स हुए तो अनीस बाजमी को समझ में आ गया था कि यार फरदीन खान की कॉमिक टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी डिलेड है, उनके रिएक्शन थोड़े लेट आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमेडी एक्टर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फरदीन खान को अनीस बाजमी ने इतना स्पेस दे दिया कि उन्होंने उनके कैरेक्टर को ही उस हिसाब से डिजाइन कर दिया, ताकि फरदीन खान की एक्टिंग के साथ उनके कैरेक्टर के रिएक्शंस जो हैं वो ट्यून इन हो पाए। एंड जो फरदीन खान का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन ऐसा दिखाया गया है ना कि स्लो है और स्लो रिएक्शंस देता है, वो बेसिकली उनकी एक्टिंग के टोन से एडजस्ट करते हुए उनके कैरेक्टर को बना दिया गया था। इसे कहते हैं अकल। रिकास्ट करने से तो यही अच्छा था कि कैरेक्टर को ही कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्यून कर दिया जाए। और इसी के चलते फरदीन खान की कॉमेडी फिल्मों में भी दुकान खुल गई यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: One of my favorite things to do is Rajkumar Rao ke saath mein filmi quiz khelna.
3: Aapko fill in the blanks karna hai. Gangs of? वास्तव में संजय दत्त ने किस चीज की गाड़ी लगाई थी?
4: पावभाजी।
3: शाबाश। डॉन को कितने मुल्क की पुलिस पकड़ना चाहती है?
5: 11।
3: गोली मार भेजे में भेजा
4: शोर करता है।
3: शाबाश। लगे रहो मुन्ना भाई में वो किस फिलॉसफी से?
4: गांधीयन।
3: सरकार में अभिषेक बच्चन के भाई का रोल किसने निभाया?
4: पीके मेनन।
3: खादा।
2: इस आदमी से कोई नहीं जीत सकता। आदमी का नाम राजकुमार राव, रेडियो स्टेशन का मिर्ची। इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है, मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिपाशा बसु जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था, that was supposed to be played by प्रियंका चोपड़ा। लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया, क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था। लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट एंट्री हुई ना कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था। अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था। इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन अब्राहम को मैंने ये भी बोलते हुए सुना था कि बिपाशा जो थी वो बीमार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। यानी कि हुआ था सोने पे अभागा। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए। एंड इनफैक्ट वो कामयाब हुई भी। आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La vizba la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या मत तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना करते थे यहाँ पे गुब्बारे वाले, फोन ठीक नहीं होते।
1: थोड़ी ना मैंने
2: आपने नहीं बनाया, आपको पहले

0: पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको,
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता रहे,
0: गुब्बारे वाला फोन यार बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं गुब्बारे वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
0: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे,
1: फोन थोड़ी ना होते
0: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
0: यहाँ फोन मत करिए यार,
2: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई।
1: हेलो
2: भाई साहब, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है, आप
2: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
2: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं,
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट, आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट,
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये,
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है.
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान.
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना

जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं बीजू शाह, हैज बीन कॉपीड फ्रॉम दिस गाना। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या यार सारा, दोनों धुनें एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुनें हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बीजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लकी अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म सुर, जो कि कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
0: मिर्ची 90s कैसेट
1: आ भी जा, ये गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार। हालांकि गाना थोड़ा सैड है, मेलैंकली है इस गाने के अंदर, लेकिन ये गाना जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है, क्योंकि इस गाने में यही गाया गया है कि आ भी जा ए सुबह आ भी जा और रात को कर विदा दिलरुबा आ भी जा। यानी कि हम जो वो टनल के एंड में एक लाइट ढूंढ रहे होते हैं ना, दिस गाना इज समवेयर अराउंड दैट फैक्ट ओनली। अब ये सुबह ना किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने की एक वजह हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी सिचुएशन में है और उस सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के लिए ये सुबह क्या मायने रखती है। इस गाने में हालांकि मोहब्बत के बारे में बात की गई है और तभी ये कहा गया है कि मैं हूँ गगन तू है जमीन, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा। लेकिन वही वाली बात है कि हम लाइफ में अभी फिलहाल किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमें चाहिए और तहे दिल से हम उस चीज के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरी दुआ भी आपके लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और जाते जाते यही गाना हो जाए। क्या बोलते हो, ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ। एंजॉय द ट्रैक एंड मैं अब कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मिल जाइएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, 'cause it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi. It's hot.
1: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है। अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
2: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people. It's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे। तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क। हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी।
1: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है। It is very easy to troll, but it's not easy to go to the gym. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
9: Hey,

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल,
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तबाही।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: भाई इस गाने को देखने के बाद अगर पापा मम्मी साथ बैठे हो तो जिंदगी में तबाही हो जाएगी। 89.6 मिर्ची 1 पर आ गया मस्त मौला गौरव बातों की दुकान लेकर। मिर्ची घड़ी का टाइम 4:04।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: हाँ जी, फिलहाल हम इस गाने की बात कर रहे थे जिसका वीडियो एकदम धमाकेदार झन्नाट टाइप है। पिक्चर से बहुत सारी उम्मीदें क्योंकि यश अपने एक अलग ही अंदाज में नजर आएंगे एंड कह सकते हैं कमाल तो पिक्चर के साथ साथ मौसम भी कर रहा है। वो कमाल जहां पर आप घर से चाहे कितने तरोताजा होकर निकलिए 2 मिनट के अंदर आपके पसीने छुड़ा दे रहा है। ह्यूमिडिटी का पारा जैसे ही बढ़ा हमारे कतर में सब कुछ फॉगी फॉगी सा हो गया है और स्पेशली चश्मा पहनने वालों को बड़ी मुश्किल हो रही। मैंने देखा अक्सर वो कहीं निकल रहे हैं बाहर जैसे ही एसी से तुरंत चश्मा पहले नीचे उतार दे रहे हैं कि बाद में पोछ पाछ के पहन लेंगे। इसी उम्मीद में कि ह्यूमिडिटी का मजा आप भी ले रहे हैं, मस्मौला गौरव शुरुआत करता है शाम शानदार की। ढेर सारी बातें लेकर आ गए हैं और बहुत कुछ आपको बताना है, चाहे वो MOPH की वो इलेक्ट्रॉनिक परमिट सिस्टम हो जो कि ट्रेवलर्स को कैरी करनी है, या फिर टॉय फेस्टिवल के दौरान क्या क्या खास हुआ, ये सब कुछ यही पता लगेगा। बस कान लगा के सुनते रहो मिर्ची। गुरु गरम है गर्मी से ज्यादा, इट्स हॉट।
3: अक्कड़ी मार दिया फेर कुड़ी, मोरे चतुर कड़ी सहर कुड़ी।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Kabana. Murga, murga. La vidva la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम।
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के।

0: है एल्बम देखिए,
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम, सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन, आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
0: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
0: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये,
1: किसी
0: का कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
1: इसको सर लगाया नहीं
0: क्या, कौन सा लेंस लगाया, एक तो बता ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
1: नहीं
0: मैं कल को
1: फोटो खींचे।
0: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
0: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार, शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
1: अरे
0: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे,
1: नहीं साहब देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
0: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, सुन के बनाया है
0: कोई फोटो, चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
0: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
0: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है
1: भी
0: दिखाइए आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
0: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
1: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट, आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट,
8: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये,
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

0: कुछ बड़ी दवाएं खाते हो और आपको एयरपोर्ट पे जाना है जहां पर परमिशन लेनी है, तो ये काम आसान हो गया है। 89.6 BG1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ डेविड सजनो। इतना ही बताना चाहता हूँ कि बहुत आसान हो गया है अब हमारे और आपके लिए अपने लिए ये जुटा पाना। यस, यहाँ बता दूं कि कंट्रोल मेडिसिन्स यानी कि प्रिस्क्राइब ड्रग्स को जो कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, अब आप उसे लेकर जाने के लिए कतर में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यस, और अब ये बहुत ही सिंपल फॉर्म हो गया है।
1: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, कतर से ट्रेवल करने के लिए, कतर वापस आने के लिए जब आप अपनी पर्सनल कंट्रोल मेडिसिन कैरी करते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक ब्रांड न्यू ई सिस्टम लॉन्च कर दिया है। मतलब जैसे अगर आप अब कंट्रोल मेडिसिन को प्रायर परमिट के लिए लंबी लाइन में लगकर पहले परमिशन लेते थे या बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाते थे ऑनलाइन, इसके लिए अब आपको एकदम सिंपल तरीके से अप्लाई कर देना है। यस, आप अब घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, स्टेटस ट्रैक करेंगे और ई फॉर्म जैसे ही आपका सबमिट होकर सब कुछ मिल जाएगा, आपको ई फॉर्मेट पे परमिशन भी रिसीव हो जाएगी। यानी कि बस आपको ध्यान रखना है सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो एंड जैसे ही ये प्रोसेस में अप्रूवल मिलेगा 3 दिन के अंदर ये आपके पास आ जाएगा। 5 working days में आप जैसे ही इसको अप्लाई करते हैं ये आ जाता है एंड इसके साथ आप एयरपोर्ट पर अपनी पर्सनल कंट्रोल मेडिसिन लेकर जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी एंड ये इसीलिए करी जा रही है ताकि अब आपको हैसल फ्री तरीके से एयरपोर्ट पे आना जाना हो पाए अपनी पर्सनल कंट्रोल मेडिसिन के साथ। एक बड़ी जानकारी है उन लोगों के लिए जरूर है जिनको मेडिसिन लेकर जाना बहुत जरूरी होता है और ऐसी मेडिसिन जो कि पर्सनल कंट्रोल में आती है यानी कि वो कंट्रोल मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब ड्रग्स है एंड गवर्नमेंट रेगुलेट करती है क्योंकि उसका रिस्क होता है मिसयूज का, अब्यूज का, फिजिकल का, ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचा दो जिनके लिए दवाई लेके जाना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बड़ा काम आएगा। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

इस साल तो खत्म हुआ, अब अगले साल का इंतजार करना होगा। क्योंकि पर्दा गिर चुका है दोस्त, कतर टॉय फेस्टिवल 2026 की एक शानदार क्लोजिंग सेरेमनी के साथ दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में एक महीने से भी ज्यादा चला ये बच्चों के खिलौनों का मेला अब फाइनली खत्म हो गया है। यस, मस्तमौला गौरव यहां आपको बताना चाहेगा कि ये खत्म हो गया है और एक शानदार नोट पर खत्म हुआ। एंड कह सकते हैं इस बार की थीम जो थी मोर टू इमेजिन अ होल वर्ल्ड ऑफ फन, ये अब तक का सबसे बिगेस्ट एडिशन था। और 22,000 स्क्वायर मीटर में बच्चों के लिए जबरदस्त प्ले जोन बनाए गए, कई सारे इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस थे एंड कार्टून करेक्टर से लेकर बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंस एंड कुछ और बड़े रिटेल अट्रैक्शंस थे जहां बच्चे चीजें खरीद रहे थे अपने लिए। एजुकेशनल एक्टिविटीज भी इसका हिस्सा रही और क्लोजिंग सेरेमनी जबरदस्त स्टेज परफॉर्मेंस के साथ खत्म हुई। और यही कहेंगे कि अब बच्चों का इंतजार है अगले साल का। Yes, जब फिर लौटेगा कतर टॉय फेस्टिवल और बहुत सारी खूबसूरत यादों को एक बार फिर से ये सारे बच्चे बना पाएंगे, इस उम्मीद में कि बच्चों ने इस साल मजे किए। लेकिन जो बच्चे नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, अगली बार वेकेशन पे मत जाना, कतर टॉय फेस्टिवल है तुम्हारा असली ठिकाना। बस मैं आपको बताऊं, जब बचपन के खिलौनों की बात होती है ना, तो मेरे पास आज भी, मैं आपको बताऊं, घर जाता हूं ना तो वो पूरा ट्रैक है जो फॉर्मूला 1 कार के लिए हम लोगों ने किसी जमाने में खरीदा था। यस, मुझे जहां तक याद आता है लियो का वो टॉय था और उसमें ना बकायदा ट्रैक बने हुए थे, हम उस पर गाड़ियों को दौड़ाते थे इधर से उधर, और वो ट्रैक आज तक हमारे घर में है। अब यूं कह लें कि प्लास्टिक है इसलिए इतने दिनों तक जिंदा है एंड कहीं ना कहीं हम पुरानी चीजों को बड़ा सजो कर रखते हैं। मीडिया बिस्किट का वो वीडियो गेम भी मेरे घर में एक कोने में पड़ा हुआ है। ये है खूबसूरती पुरानी चीजों की जो आज तक हमारे साथ हैं। आने वाली जनरेशन देखेंगी कि कितना जबरदस्त तरीके का वीडियो गेम होता था। अब इनके लिए तो सब मोबाइल में और PS में हो जा रहा है। 89.6 मिर्ची वाली थॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? JCB से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: प्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
5: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव।

0: मुस्तफा मुस्तफा रहमान की आवाज का जादू,
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: 89.6 मिर्ची 1 पर मस्पोरा गौरव आपके साथ, और ये है यार रहमान की आवाज का जादू जो आपने इस मैजिक को यहाँ पर सुना किसके साथ, मेरे साथ, एंड मौसम नहीं दे रहा है साथ।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट
0: राइट नाउ की बात करें, इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। शाम को 5 बजने को आ गए तो भी ये स्थिति है। वैसे दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 44 पहुंचा, दिन का मिनिमम अराउंड 34 आएगा। एंड बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जबरदस्त ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी को और ज्यादा हम फील कर पा रहे हैं। वेल बता दें, ह्यूमिडिटी 44% एंड हवाओं की रफ्तार 14 किलोमीटर के आसपास, जो बिल्कुल किसी काम नहीं आ रही है। जबरदस्त पसीने छूटेंगे, अभी कुछ दिनों तक तो याली गर्मी झेलनी है। पानी पी के अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, और मिर्ची सुनते रहिए क्योंकि कानों का सुकून तो यही मिलेगा। मिर्ची इट्स हॉट। और बिजली की बात जब आती है तो कतर में कहरामा बिल भेजता है, लेकिन यहाँ हम हाडी संधू गाज में बिजली का गाना भेज रहे हैं।
4: ओ चनती कुड़ी, ओ चनती कुड़ी।

0: Ochanna di Corini. Ochanna di Corini.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
2: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
3: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
4: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
5: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
4: योर स्पेशल ऑफर?
5: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
4: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
5: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
4: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live.

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन. कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का. इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: अरिजीत सिंह की आवाज में गाना सुन लिया और आपके साथ कौन आ गया? हम आते तो अकेले नहीं आते, घड़ी का वक्त अपने साथ लाते, शाम के 5:04 से 5 मिनट की तरफ बढ़ते हुए हम
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: और देखिए जब शाम के बज जाते हैं 5 तो हम आप खिलके इनसे मिलके खेलते हैं। एक आवाज सुनाता हूँ, पूछता हूँ बताओ ये किसकी आवाज है। आज इनकी आवाज बहुत खास है।
3: नहीं, ऐसे कुछ स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन आई थिंक हम लोग वी आर वेरी हैप्पी एंड आई थिंक हैप्पीनेस एक की एलिमेंट है रिलेशनशिप में। इट शुड बी देयर
1: रिलेशनशिप में। हैप्पीनेस जो है बड़ा इम्पोर्टेंट एक माइलस्टोन होता है और वही इम्पोर्टेंट स्टेप की बात ये कर रही है। आइए एक बार फिर से सुनिए।
3: नहीं, ऐसे कुछ स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन आई थिंक हम लोग वी आर वेरी हैप्पी एंड आई थिंक हैप्पीनेस एक की एलिमेंट है रिलेशनशिप में। इट शुड बी देयर
1: की एलिमेंट रिलेशनशिप में। की एलिमेंट जो है हैप्पीनेस का है और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इतने कीन हैं कि आंसर भेज दे रहे। बाप रे बाप यार, यूसुफ भाई आप तो कमाल है यार, सबसे पहले जवाब भेज दिया बिना कहे 5000 1896 पर। आपको बताना है कि ये जो आवाज मैं इस वक्त यहाँ प्ले कर रहा हूँ ये किस अदाकारा की आवाज है।
3: नहीं, ऐसे कुछ स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन आई थिंक हम लोग वी आर वेरी हैप्पी एंड आई थिंक हैप्पीनेस एक की एलिमेंट है रिलेशनशिप में। इट शुड बी देयर
1: की एलिमेंट की बात कर रही है 5000 1896 पर। आप बताइए ये कौन सी एक्ट्रेस है जिनकी आवाज मैंने यहाँ प्ले की है। इतना ही कह सकता हूँ मियाँ बीबी दोनों एक्टर हैं और घर में इनके ससुर जी जो कि अब लेट ससुर जी हो गए वो पॉलिटिशियन थे। 5000 1896 पे कॉल नहीं करना है भाई साहब, कॉल नहीं करना है, वॉइस नोट पे अपना जवाब भेज दीजिए। मैं फटाफट से आपकी आवाज को पूरे कतर को सुना दूंगा। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट बंजारे की आवाज में बायरन।

0: डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
1: कहाँ है सर?
0: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
1: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
0: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
1: मैं दे दूंगा।
0: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है।
1: 4 यूनिट?
0: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ, ब्लड नहीं
1: चाहिए
0: इसको, यूरिन की कमी हो गई है। आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
1: क्या चढ़ाना है?
0: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार। यहाँ पे
1: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना?
0: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
1: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब चढ़ाऊं?
0: आपका ग्रुप मिल गया
1: सर? इसका यूरिन में सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यूरिन का भी कुछ होता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे।
1: जी।
0: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
1: अच्छा,
0: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
1: क्या कह रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा।
0: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
1: अभी तो सर लग नहीं रहा।
0: हाँ,
1: 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
0: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
1: जी
0: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
1: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
0: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
3: इट्स पटाक।
4: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, 2 लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है, स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah live.

0: बादशाह आपके साथ है मस्त मौला गौरव। वैसे हम जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ नाम के आगे वाह वैसे ही लग जाता है, मतलब अपने प्यार से दोस्त। अरे गौरवा, अरे सुनीलवा, अरे शुभमवा, ये हमारे यहाँ बहुत होता है। फिलहाल इन सब के बीच आगे ले गए वो खेल जिसे कहते हैं पहचान कौन। में एक आवाज आपके कानों में जाती है, पूछता हूँ बताओ ये किसकी आवाज है।
1: ऐसे कुछ स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन आई थिंक हम लोग वी आर वेरी हैप्पी एंड आई थिंक हैप्पीनेस एक की एलिमेंट है रिलेशनशिप में, इट शुड बी देयर।
2: हाय गौरव, इनका नाम है जेनेलिया, वाइफ
3: हाय भाई मैं सफियान, अभी जो आवाज सुनाया वो जेनेलिया का है।
4: गुड इवनिंग गौरव, यूसुफ इतियो, ये आवाज है जेनेलिया देशमुख की। ओके थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू
5: गौरव, दिस इज अभिलाष, द वॉइस नोट दैट यू प्लेड इज ऑफ जेनेला डिसूजा।
0: अरे वाह,
6: हाय मिर्ची वन कदर, आई थिंक द आंसर इज रितेश देशमुख एंड जेनेलिया डिसूजा। एक्चुअली आई डिड नॉट लिसन टू द कंप्लीट क्वेश्चन, दिस दैट्स माय आंसर। थैंक यू।
0: ओके थैंक यू, थैंक यू।
7: द नेम ऑफ द एक्ट्रेस for the voice which you have played is Jenila D'Souza,
0: okay.
7: Wife of Ritesh Deshmukh. Thank you.
8: Hi Gaurav, good afternoon. This is Riyad Arif. The voice is of actress Jelinia D'Souza.
9: Okay. Hello, I am Yunus Afridi. This voice is Twinkle Khanna.
0: Okay. Okay, thank you bhai. Twinkle Khanna to aap se garbal ho gaya, lekin Jenilia wale sahi jawab. ये ट्विंकल खन्ना नहीं है, ये जेनेलिया डिसूजा अब देशमुख हैं। बिल्कुल मिलाकर जबरदस्त जोड़ी, और आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे, इसलिए हमने इनकी आवाज सुनाई। हैप्पी बर्थडे टू जेनेलिया, हैप्पी बर्थडे टू काजोल, आज दोनों हमारे बॉलीवुड की क्वींस का बर्थडे। मिर्ची की तरफ से इन दोनों के लिए अगला गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में, है तो परम सुंदरी दोनों।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लेडी ने रोटी बेलने के लिए रोड रोलर मंगा लिया।
3: भाई फिर तो मुझे लगता है कि ये सब्जी पकाने के लिए चम्मच नहीं सीधा फावड़े का इस्तेमाल करती होगी, और ऊपर से अगर इसको रोटी पलटनी है तो पता है कैसे पलटेगी? जेसीबी से।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
5: द मेंटलिस्ट सुहानिशा।

0: 89.6 मिनट जीवन पर जहां आप वहां मैं
1: मस्त मौला गौरव।
0: हाँ भाई, आफ्टर ऑल हमारी आपकी दोस्ती किसी से छुपी थोड़े। शाम 4 बजते ही आ जाते हैं, 8 बजे तक आपके साथ रह के यहीं जाते हैं। वैसे फिलहाल के लिए आपको अब दोस्ती निभानी है, और विश्वास कीजिए मुझे आपका दिमाग तो नहीं पढ़ने आता, लेकिन आपको अगर चाहिए कोई ऐसा इंसान जो आपका दिमाग पढ़ ले तो वो आ रहा है। The Mentalist सुहानी शाह लाइव इन कदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्रेजेंटेड बाय आईपे, हमारे एसोसिएट पार्टनर्स डेरी क्वीन, पापा जोन्स, रेस्टो पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, साथ ही साथ हमारे इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, प्रोडक्शन पार्टनर सिम्फनी एंड हमारे मार्केटिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, ये सब तो साथ आए हैं। साथ ही साथ अब और भी ढेर सारे लोग जुड़ने वाले हैं, जिसमें किम्स हेल्थ से लेकर हमारे साथ ही साथ बलादना है, एंड वो दिन दूर नहीं जब सुहानी शाह आपके दिमाग के अंदर के फितूर को पढ़ लेगी और आप हो जाएंगे शॉक्ड। वैसे इस कला को देखना और सीखना भी अपनी एक क्वालिटी होगी, तो वही टारगेट से आना है आपको। टिकट्स बुक करने के लिए स्नूनो सिटी पर जाइए, सिटी पर ये आपको फटाफट से अभी मिल रही है अली बर्ड ऑफर के तहत, तो इस मौके का फायदा उठाइए, ग्रुप बुकिंग पे और अच्छे से फायदा उठाइए और अपने दोस्तों यारों के साथ आइए, ताकि आप जब सुहानी आपको सिखा के चली जाए तो आप भी एक दूसरे का दिमाग पढ़ पाए। इस उम्मीद में कि आप अपनी टिकट्स बुक करा रहे हैं सिटी पर जाकर। मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची 1 पर, और ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे गेम्स अगले घंटे में इंतजार कर रहे हैं। मिर्ची, इट्स हॉट।

हाय, मैं हूँ सलमान खान। अब रेडियो मिर्ची पर एक मजेदार मिर्चीदार किक आपको मिलेगा। मेरी फिल्म किक का ये गाना सुनकर रेडियो मिर्ची 98.3 FM हॉट है।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
3: मैं करूँ?
4: आप करोगे?
3: नहीं, मैं करवाता हूँ. मतलब मेरा होता है.
4: वो तो पता है. मेरा बस चलता है, एक एक को घुसड़ मार के आती हूँ.
3: माई फ्रेंड. हाउ आर यू माई फ्रेंड?
2: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल.
1: ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं. या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at SCT Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं एक कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: I'm joking, mama.

0: माशुका महमूद राघव चैतन्य अरुआ के आवाज में यहाँ सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव।
0: और सजनों जब आपके साथ है तो घड़ी का टाइम बताए ना, ऐसा हो नहीं सकता 6:04 होने को आ गए।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: चले जी, इन सब के बीच मस्त मौला गौरव आ गया है आपके पास ढेर सारी बातों की दुकान लेकर, लेकिन इस घंटे हम खेलते हैं बॉलीवुड का सरप्राइज वाला टेस्ट।
3: अब शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
4: ओके सर।
0: अब आपको बताना ये है कि हमारे आज की जो बर्थडे गर्ल हैं काजोल, याद रखिएगा काजोल आज की बर्थडे गर्ल है, उनके बारे में एक बात बतानी है कि हीरोइन बनने से पहले उन्हें अक्षय पर क्रश था, कैन यू इमेजिन। हाँ जी, वैसे फिलहाल काजोल की डेब्यू फिल्म क्या है आज आपको ये बताना है। 5000 1896 पर वॉइस नोट करके भेजिए कि गौरव काजोल की डेब्यू फिल्म का नाम ये है। ट्रस्ट मी, मैं बोल रहा हूँ आप फंस जाएंगे, आपको आइडिया नहीं है आप फंसने वाले हैं। मेरे को पता है कि आप चाह कर भी, ये तो काजोल के फैन हैं, लेकिन काजोल की डेब्यू फिल्म का नाम बताने में आप फंस जाएंगे। 5000 1896 पर मस्त मौला गौरव आपके जवाबों का इंतजार कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके अपना जवाब भेजिए वॉइस नोट करके, हाय गौरव मैं ये बोल रहा हूँ और काजोल की डेब्यू फिल्म का नाम है ये। चलिए जी, देखें आप लोग सबको याद है कि नहीं काजोल की डेब्यू फिल्म का नाम क्या है। 5000 1896 पर मस्त मौला गौरव आपके जवाब के इंतजार में, यहां मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Milci, burka.
1: हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार, कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, अबे गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या? हेलो हेलो, मैंने माना जल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या अब आप पागल हैं क्या?
2: पागल आप हैं, पागल आप
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप।
3: किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया, फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए,
2: आज के बाद घर से आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, डीरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। टीएनसी सप्लाई।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने

0: सोनू निगम की आवाजिया गजब लगे हर भैया
1: मस्त मौला गौरव।
0: बट ट्रस्ट मी, इतने सालों के बाद भी इस गाने की एनर्जी अपने आप में ही अलग है भाई साहब। फिलहाल के लिए आ गया मस्त मौला गौरव आपके साथ, कर रहा है सवाल जवाब बॉलीवुड से रिलेटेड।
2: अब शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
3: ओके सर।
0: बर्थडे गर्ल है, हैप्पी बर्थडे मना रहे होंगे हमारे अजय देवगन जी, जुबान केसरिया करके एंड बर्थडे की मिठाई खा के। लेकिन काजोल जी की डेब्यू फिल्म का नाम मैंने पूछा था, बर्थडे गर्ल काजोल की डेब्यू फिल्म का नाम क्या है?
4: गौरव, दिस इज आसिफ। क्योंकि फर्स्ट फिल्म में गौरव, ये दिल लगी।
5: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आहिद राजा, काजल का पहला फिल्म का नाम है आई थिंक हमेशा।
6: हेलो गौरव, माय नेम अली वजदार।
0: अली अली, सलाम।
6: मूवी काजोल डुप्लीकेट यानी कुछ कहती कुछ मी थी, सुनील शेट्टी, ऋषि कपूर, काजोल।
0: गलत जवाब।
7: आई थिंक बेखुदी होगा, सॉरी।
8: हाय, गुड इवनिंग गौरव, मेरा नाम सुरेश है। और अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा काजोल की फर्स्ट डेब्यूट मूवी, तो उस मूवी का नाम है बेखुदी। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: थैंक यू भाई।
9: फर्स्ट डेब्यू मूवी इज बेखुदी।
0: बेखुदी इज द राइट आंसर। लेकिन जितने भी लोगों ने ये दिल लगी कहा है, मैं उनकी बिल्कुल भी गलत नहीं कहूंगा उनको, क्योंकि हम सबको ये लगता है कि काजोल की फिल्म ये दिल लगी थी, लेकिन जब आप इंटरनेट पर जाते तब पता लगता है बेखुदी। तो कमल सदाना के साथ इनकी ये फिल्म बेखुदी, जिसमें पप्पू कंगी भाई भी थे, मेरे को इतना याद आता है। यस, और यही इस फिल्म के सही जवाब में था, बेखुदी इज द राइट आंसर। ये दिल लगी 31 जुलाई को रिलीज हुई थी इनकी ये मूवी बेखुदी 1992 में। मतलब यार, समय ऐसे निकल गया पता ही नहीं लग रहा है। वैसे फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा कि काजोल को जिस फिल्म के लिए हम सबने जाना वो तो बाजीगरी है भाई। अगला गाना उन्हीं के लिए, बर्थडे गर्ल आपके लिए।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: जस ने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराए तो एक लाए छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड केओस। है जवानी तो इश्क होना है। स्ट्रीम इट नाउ ओनली ऑन Z5। डाउनलोड द ऐप नाउ। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

दिमाग का जादू चलाएगी जब वो आएगी। अरे बात करें सुहानी शाह लाइव इन कदर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय आईपे, जहां पर मैं आपको बता दूं शी हैज परफॉर्म्ड ओवर 5000 लाइव शोज, बस 5000 से भी ज्यादा लाइव शोज के लड़की ने। एंड हम आपको बता दें सबसे बड़ी बात है, शी इज दी फर्स्ट इंडियन मेंटलिस्ट मैजिशियन टू परफॉर्म सोल्ड आउट एडिनबर्ग फ्रिंज फेस्टिवल, और इसके अलावा लंदन के सोहो थिएटर में भी लड़की ने फुल सोल्ड आउट शो किया हुआ है। मतलब ये कमाल की एक आर्टिस्ट है, यूं कह लें मेंटलिस्ट, उसके साथ ही साथ इल्यूजन करती हैं एंड आप दिमाग को यूं रीड करती हैं कि पूरी दुनिया ने माइंड रीडर ही कह रहा है। वेल 1990 में जन्म हुआ और 7 साल की छोटी उम्र में 97 में अपना पहला स्टेज शो किया। एंड इमेजिन जब ये हमारे कतर आएंगी तो क्या होने वाला है। इंडिया की सबसे रेनाउंड मेंटलिस्ट, यूं कह लें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, सारे सेलेब्स को हिला चुकी हैं, अब बारी कतर को हिला देने की है। तो द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 25th ऑफ सितंबर एट QNCC, अपनी टिकट्स बुक कर लो स्नूनू सिटी पर। यस स्नूनू पर ये राइट नाउ आपको अर्ली बर्ड के साथ मिली, यानी कि डिस्काउंटेड रेट्स। बाद में मत बोलना यार गौरव कोई जुगाड़ है क्या यार, मैं ना थोड़ा भूल गया था, याद दिला रहे हैं बार बार, इसीलिए हम देखना चाह रहे हैं कितने लोग मेरी बात पर ध्यान दे रहे हैं। सुहानी शाह लाइव इन कतर 25th ऑफ सितंबर QNCC, जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक कर लो दोस्त, क्योंकि ये शो नहीं है, ये दिमाग को हिला देने वाला शो है। 89.6 मिर्ची वन पर दिमाग की तितलियां उड़ेंगी जब ये आएगी, लेकिन फिलहाल चिन्मय शिरपर्दा गोपी सुंदर तुम लोग उड़ाओ, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
3: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय। आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट, व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स। इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
2: रणबीर कपूर जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हैट ओ हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है, मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 500 मिलियन यूरोस लगा दिए हमारे कतर ने, इसको गिनने में ही हमारी तो जिंदगी बीत जाएगी 7:04 के करीब।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यस, बस बोलो गौरव आपके साथ है देवी और सज्जनों। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कतर डेवलपमेंट बैंक ने इन्वेस्ट किया यूरोपियन AI स्पेशलाइज्ड कंपनी मल्टीवर्स कंप्यूटिंग में एज अ पार्ट ऑफ 500 मिलियन फंडिंग राउंड, और कंपनी की वैल्यूएशन 1.5 बिलियन यूरो है। एज पार्ट एक्सपेंशन कह सकते हैं इसको, मल्टीवर्स कंप्यूटिंग में इन्होंने पैसे लगाए हैं और आने वाले टाइम में इसका कुछ बड़ा रिजल्ट भी दिखेगा। वेल बता दें, कतर रीजनल हब में इनोवेशन के मामले में, एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में अपने आप को जिस तरह से प्रूव कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बात कर लें, सब चीज़ों की कतर एक स्ट्रांग प्रेजेंस लेकर आया है और अब ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज कतर के लिए अट्रैक्ट तो हो रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड आने वाले टाइम में आप कुछ बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर्स भी कतर में देखने वाले हैं। AI की दुनिया कह लें, डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया कह ले, एक अच्छी शुरुआत। इतना पैसा गिनने में तो लग जाए हमको दिन रात, है जी। बस बोलो गौरव फिलहाल आपके साथ देवी और सज्जनों। 3 घंटे पहले की बात करें तो शहनिया में बारिश हुई, ऐसी बारिश जो उसी इलाके तक रही। हालांकि इससे राहत कितनी मिलेगी नहीं पता, पर किश्तों में बारिश होती कभी कभी ये देख के बड़ा बुरा लगता है कि हमसे क्या गलती हुई, मुझसे का भूल हुई जो ये बारिश दुआ और बकरा ना हुई। मिर्ची इट्स हॉट,
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: हेलो, सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार? ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन ले गया,
1: डिस्प्ले आ रहा है,
2: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख, ये क्या यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: थोड़ी ना
2: आपने नहीं बनाया, आपको पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर, काम का टाइम है,
3: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

0: अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपका टाइम और आपकी थोड़ी एनर्जी मैं बचा दूंगा। 89.6 जीवन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। और कतर में अब कंट्रोल मेडिसिन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने आपके लिए एक नया अपडेट ला दिया है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक परमिट सिस्टम के जरिए कंट्रोल मेडिसिन ले जाने की इजाजत दे देगा।
1: #9749
0: यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो कंट्रोल मेडिसिन का यूज करते हैं, यानी कि वो मेडिसिन जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद ही आप उसे कैरी कर कतर में आ सकते हैं या कतर से जा सकते हैं। सो MOPH ने अब एक ब्रांड न्यू ई सिस्टम लॉन्च किया है, मतलब कंट्रोल मेडिसिन की प्रायर परमिट करने के लिए जो लेते हैं आप, उसके लिए अब लाइन में कहीं नहीं लगना है, जाना नहीं है, आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन में जाकर अपलोड कर देना है और फिर उसे टाइम टाइम पर ट्रैक करते रहोगे। ई फॉर्मेट में आपको इसका सीधा परमिट आ जाएगा और वो लेकर आप आराम से अपनी इस कंट्रोल मेडिसिन को कहीं भी जा पाओगे। लेकिन याद रखिए, आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे और अप्रूवल में 3 working days का टाइम लग सकता है। लेकिन सेफ साइड रहने के लिए ट्रेवल डेट से कम 5 दिन पहले ही आप इसे अप्लाई कर दो, मुझे लगता है ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। MOPH की वेबसाइट पर एक सिंपल गाइडेंस बुकलेट भी है, अगर आप जाओगे तो आपको वहां ये मिल जाएगा। आप इन सारे कंट्रोल मेडिसिन की लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो आप कहोगे गौरव ने बता दिया भैया, बड़ा फायदा हो गया, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, सब कुछ ऑनलाइन ही आ गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भैया टेक्नोलॉजी की इस डिजिटल दुनिया में आप भी 89.6 मिर्ची वन को डिजिटली ट्यून करते रह करिए और सुनते रह करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी फायदे की बातें होती है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoonu, बुक योर्स नाउ।
7: In association with Dairy Queen, beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen and Papa John's. Enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
5: Restaurant partner Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner Brand Arts.
8: Visual media partner Rehab Media.
5: Production partner Symphony.

0: कैसा लगता है जब हमारे से भी ज्यादा कोई हमारा ख्याल रखता है? भैया हमारे कतर में तो ये काम मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ बार बार कर रही है और अभी उन्होंने आज भी किया है।
1: #974974
0: हम आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ जो हमारा समय समय पर ध्यान रखती है, कहीं ना कहीं हर वक्त हमारे सेहत के लिए परेशान रहती है। उन्होंने अभी राइट नाउ आज एक इम्पोर्टेंट काम किया है। उन्होंने सारे के सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज और डॉक्टर को एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर इशू किया है। एंड दिस इज रिगार्डिंग फूड बॉर्न डिजीजेस, यानी कि कोई फूड पॉइजनिंग का कंफर्म केस या फिर सस्पेक्टेड केस दिखाई पड़ रहा है, उससे 24 आवर्स के अंदर उन सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को रिपोर्ट करना है और डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना है। और इनका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका नाम है सेव्स। उसी सेव्स पर इसकी रिपोर्टिंग करनी है ताकि टाइमली एक्शन लिया जा सके और ये काफी बड़ा हो जाए उससे पहले इसे कंट्रोल किया जा सके, तो सही टाइम पर इस आउटब्रेक को रोका जा सके। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर नोटिस आज MOPH ने सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट करके कहा है कि आपको फूड पॉइजनिंग केसेस पर जितनी जल्दी हो सके 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। एंड दिस इज व्हाई आई लव कतर। यहां के एक एक चीज इतनी प्यारी है, हमारे और आपकी सेहत का ख्याल ऐसे रखा जाता है मानो हम इस पूरे परिवार कतर का हिस्सा हो। MOPH को दिल से थैंक यू जो हर समय हमारी सेहत के बारे में सोचता है, क्योंकि भैया वाकई इस दुनिया में एक सच्चाई तो है, हेल्थ इज रियल वेल्थ। उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा अटर चटर पटर मत खाइए, बहुत हेल्दी खाइए ताकि आप फिट एंड फाइन बने रहें। मौसम देख रहे हैं, ऐसे ही मौसम में डायरिया वायरिया हो जाता है। अपना ध्यान रखो। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

जब ये गली वाला शहर आता है, मुझे अपने गलियों का शहर बनारस याद आता है। वेल, किसी जमाने में अंग्रेजों ने भी कहा था सिटी ऑफ लेन्स। वेल, मस्त मौला गौरव आपके साथ है एंड हम बनारस से हैं और फिलहाल हम शतरंज की बात करेंगे, क्योंकि आजकल दुनिया में वैसे ही लोग एक दूसरे के साथ इतना खेल रहे हैं दिमाग से, तो हम कहते हैं इस दिमागी खेल के बारे में क्यों ना बात की जाए। जहां पर कतर नेशनल लाइब्रेरी के मेन प्लाजा में कल शाम 3 बजे से देर शाम 6 बजे तक होने वाला है ओपन चेस फॉर ऑल। यस, यहां पर मस्त मौला गौरव आपको बता दे, जितने भी चेस प्लेयर्स है ना, उनके पास एक मौका है कि वो बैठे और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करें इनफॉर्मल चेस गैदरिंग में। हमारे कतर में होने जा रही है, सारे एज ग्रुप, सारे स्किल लेवल वाले एक साथ आ जाएं, आप अपने जैसे ही अपोनेंट ढूंढ पाएंगे आई एम श्योर, क्योंकि ये सारा पहली बार होने जा रहा है कतर नेशनल लाइब्रेरी मेन प्लाजा में, जहां चेस प्लेयर्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे एंड उन्हें मिलेगा एक प्लेटफॉर्म और चेस बकायदा उन्हें वहीं प्रोवाइड किया जाएगा, लेके भी नहीं जाना है। तो बस आ जाओ इस ओपन इवेंट में जो कि होने वाला है कतर नेशनल लाइब्रेरी में। शतरंज के शातिर खिलाड़ियों आपका इंतजार कर रहा है कल कतर नेशनल लाइब्रेरी, दोपहर 3 शाम 6 बजे तक ये चलेगा। एंड अगर आपके पास इस गेम का हुनर है तो फिर क्यों बैठे हो, तोड़ा दो घोड़े को ढाई चाल, हाथी को एकदम सीधा एंड ऊंट को तिरछा। 89.6 मिर्ची 1 पर फिलहाल मस्त मौला गौरव सेइंग टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल शाम एक बार फिर से जुमा रात के दिन ढेर सारा मस्ती धमाल कमाल लेकर यही मिर्ची पर। हबीबी हरारा कतीर मिर्ची थॉट मस्सलाम।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah live.

0: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: 2002 का ये गाना, यार क्या वाइब थी ना उस वक्त। सारे ऐसे एल्बम सॉन्ग्स आते थे इंडी पॉप, और हम लोग को इतना मजा आता था। सारे वीडियोस बैठ के हम टीवी पे देखा करते थे, और बहुत ही यू नो इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आया करते थे उस वक्त पे। मजा अलग था यार, इंटरेस्टिंग सीरियल्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस, एल्बम्स। 2002 एंड दोज इयर्स वर अ वाइब फॉर श्योर।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और अगला गाना भी यू नो उसी जॉनरा से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और, बट इसके बारे में एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताऊंगी जो कि मुझे भी रिसेंटली पता चला। सो दीवाना एल्बम, हाँ, ऑल इन ऑल सोनू निगम का एल्बम, और अमेजिंग वीडियोज अगेन, एंड बहुत ही बढ़िया बेहतरीन, हम सब ने बहुत सुना कैसेट्स में रिकॉर्ड करा करा के। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि दीवाना तेरा जो गाना है वो बेसिकली साजिद वाजिद जो कंपोजर्स थे, बेसिकली वाजिद खान का एज अ सिंगर लॉन्च होने वाला था विद द सॉन्ग दीवाना। मतलब आपको पता है कि दीवाना एल्बम के साथ सोनू निगम जुड़े हैं बाद में, तो बेसिकली दीवाना एल्बम के गाने साजिद वाजिद ने कंपोज किए थे और वाजिद को वो लोग लॉन्च करने वाले थे। बट यू नो सोनू के कुछ गाने तब तक हिट हो चुके थे, एंड दे वांटेड इंस्टेड कि सोनू शुड अपीयर एज अ सिंगर ऑन दैट एल्बम। और इस तरीके से द क्लासिक कल्ट एल्बम दीवाना सोनू निगम के नाम हुआ। अमेजिंग ना, ऐसी चीजें लाइफ में होती रहती हैं। हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, ऐसी मोमेंट्स आ जाते हैं अचानक से जो लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं बाद में। सुनो इस गाने को, अगला लेकर आई हूँ आपके लिए सोनू निगम दीवाना तेरा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे, मैं हूँ आपके साथ पारुल, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambana.
1: Murga, murga. La virpa, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
4: जी बोल रहा हूँ।
3: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
4: कहाँ ना सर?
3: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
4: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
3: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
4: मैं दे दूंगा।
3: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
4: 4 यूनिट?
3: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं
4: चाहिए
3: इसको, यूरिन की कमी हो गई है। आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
4: क्या चढ़ाना है?
3: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
4: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है?
3: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
4: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
3: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
4: सर? इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: यूरिन का भी कुछ होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
4: जी जी,
3: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
4: अच्छा,
3: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
4: क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा।
3: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
4: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
3: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
4: जी
3: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
4: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: If you come to think of it, what a beautiful thought na, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने जो ये लिखा है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, कितनी सिंपल सी रिलेटेबल बात को बस उल्टा करके उन्होंने इस तरीके से पोर्ट्रे किया, which you know translates into कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, मैं बस आज खुश हूँ।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। दिस फिल्म खामोशी द म्यूजिकल, व्हाट अ फिल्म, व्हाट परफॉर्मेंसेस, व्हाट सॉन्ग्स, मतलब ये पूरे अपने आप में ना एक खामोशी द म्यूजिकल पीडिया है। सो इट इज अमेजिंग। अगर आपने नहीं देखी है इस फिल्म को, जरूर से देखिए। और ये जो फीलिंग होती है ना, खुशी वाली, आज मैं ऊपर वाली, बहुत सारी चीजें आपको दे सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फेवरेट टीम फुटबॉल या क्रिकेट जीत जाए, आपका फेवरेट प्लेयर बढ़िया सिक्सेस मार के 100 रन बना ले या 50 बना ले, या फिर यू नो आप घर पे पहुंचे और आपके पसंद का खाना मिल जाए, या फिर एक वो फीलिंग होती है ना कि आपके पापा ने कभी शायद खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा। आई थिंक ऑल द डैड्स आर द सेम इन दिस मैटर। कभी खुद कुछ नई चीज खरीद के खुश नहीं होते हैं। आप दिला भी देंगे, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग तब भी वो खुश नहीं होंगे, क्यों पैसे खर्चता है। सो जब उनको आप इतना अच्छा कमाने लग जाएं कि उनकी पसंद, उनकी ख्वाहिशें उनके बिना बोले आप पूरी कर सकें, उनकी खुशी और आपको जो खुशी मिलेगी वो करके, यू नो दोस काइंड्स ऑफ खुशियां गिव मी मिलियन गूज बम्स। तो अगर आप वैसी खुशी अभी तक देने के बारे में सोच रहे हो, एंड यू अर्निंग वेल, और आप ऐसा मे बी यू नो इट हैज स्लिप्ड योर माइंड, जरूर से ऐसा करो अपने डैड्स के लिए। यू नो वो शायद आपको डांट देंगे, ऊपर से फटकार देंगे कि क्या है, हट, पता नहीं क्यों पैसे खर्च करता है, पर जो अंदर से उनको खुशी मिलेगी ना, यू कांट मैच दैट खुशी। ऐसा ही एक अनमैचेबल गाना, अच्छी हैप्पी फीलिंग वाला आपके लिए लेकर आई हूँ, फ्रॉम द फिल्म लगान। किसी का कोई डर नहीं होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। सुनो इस गाने को। एंड हाँ, बिफोर यू गो आपको एक अमेजिंग बात बताती हूँ इस गाने के बारे में। तो ए आर रहमान सर की कॉम्पोजिशन है ये सारे फिल्म के गाने लगान के। और आपको पता है, एक रिसेंट इंटरव्यू में मैंने देखा कि जावेद अख्तर साहब जब इस गाने के लिरिक्स लिख रहे थे तो उन्होंने कुछ कुछ लिखा, लेकिन ए आर रहमान सर ने विदाउट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी प्रीटी मच उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं नहीं, कोई एक शब्द इस गाने में ऐसा आना चाहिए जो रेपिटेटिव हो, जो यू नो एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दे इस गाने का। एंड ऑन हिज रिकमेंडेशन ये वर्ड एड हुआ इस गाने में जावेद अख्तर साहब के द्वारा, विच वॉज यू नो लेटर द टाइटल ऑफ दिस सॉन्ग कॉल्ड मितवा। सो या सच स्टोरीज ऑल्सो गिव मी हैप्पीनेस। सुनो इस गाने को, मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे, मेरा नाम है पारुल। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
3: स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
4: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया, और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट SCD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: इस गाने को सुनूं और मेरी आंखें नम ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। उस्ताद राशिद खान साहब की आवाज में एक गाना है, जब भी मेट से है हम सब जानते हैं, द सिचुएशन, दैट फिल्म, यार एवरीथिंग अबाउट दैट फिल्म एंड द सॉन्ग्स वाज आल्सो कल्ट। कुछ चीजें ऐसी बन जाती है ना जो उसके बाद वैसा कुछ नहीं हो सकता, चाहे कितना भी आप कह लो कि तमाशा वगैरह वगैरह बहुत अच्छी फिल्में हैं, बट आई डोंट थिंक जब भी मेट जैसी कोई भी फिल्म है इम्तियाज अली की। आई बिलीव इन दैट फैक्ट। आपको बताए एक और मजेदार फन फैक्ट बताती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो पर्टिकुलरली उस फिल्म के लिए नहीं बने होते हैं ओरिजिनली, बट फिर वो उस फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं ग्रेजुअली। ये भी उनमें से एक गाना है। तो आओगे जब तुम नहीं बना था इस फिल्म के लिए, बट जब इम्तियाज अली ने सुना उनको लगा कि भाई बैंग ऑन, आई नीड दिस। ऐसे और बहुत सारे गाने हैं, जैसे कलयुग का आपको आदत याद है, ऑफ कोर्स वो उस पिक्चर के लिए नहीं बनाया गया था। उड़ता पंजाब का एक कुड़ी, That lyrical poetry, gum hai, that was not supposed to be in Udta Punjab, but then it became. Aise bahut saare gaane aap dhoondoge to aapko milenge. So yes, this was a fun fact from my side. Agla gaana jo aapke liye lekar aayi hoon, Mohit Chauhan aur Shreya Ghoshal ki awaaz mein, ye bhi ek behad khoobsurat gaana hai from the film called Kismat Connection. Yaad hai aapko, Shahid Kapoor, Vidya Balan. And this song has a magical feeling. So, I'll see you in a short break. Stay tuned to Mirchi, it's hot.

0: creation with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Chocolate Lizard at Dairy Queen. And Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: Hollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordal.
4: Only on Mirchi. It's hot.
5: नेहा शर्मा, आपको आए दिन कोई ना कोई ट्रोल करता रहता है. अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो क्या कहते?
6: अंदर से मैं ट्रोल करना चाहती हूँ, but I can't. But if I were to, I would. You know, there are people. It's unbelievable. कुछ लोग नीचे लिखते हैं, रोज जिम जाते हो फिर भी पतले नहीं हो रहे. तुम लोगों को क्या सिक्स पैक्स एट पैक्स है क्या घर पे? जाओ ना जिम, इट्स हार्ड वर्क. हाँ जाओ डेली जिम, इट्स नॉट ईजी.
5: करेक्ट, नेहा शर्मा सही कह रही है. It is very easy to troll, but it's not easy to go to the gym. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
3: Bollywood Bordal.
4: Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal. Only on Mirchi, it's hot.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
8: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai, ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala, lekin use pata hai. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
2: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: दिल चाहता है शंकर महादेवन की आवाज में ये ब्यूटीफुल फिल्म, ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, कौन नहीं जानता इसको।
1: मिर्ची कैफे,
0: आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। लेकिन जो आप बात नहीं जानते वो मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग एज ग्रुप्स की या अलग अलग डेकेड्स की अलग अलग दोस्तियाँ होती हैं। पहली होती है स्कूल वाली दोस्ती, जिसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई इम्प्रेस नहीं करना किसी को, दोस्त पेन फाइट्स, एक दूसरे के सामान निकाल रहे हैं, खाने खा रहे हैं, और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि पता नहीं हम कितने लंबे टाइम तक साथ रहेंगे या नहीं। नो टेंशन, सिर्फ होमवर्क टेंशन। 20s की जो दोस्ती होती है वो होती है मौज मस्ती, देर रात तक की बातें, बहुत सारी दोस्तियां जो रिलेशनशिप में बदल जाती हैं। 30s में आते आते बहुत कम दोस्त बचते हैं, लेकिन हाँ, जो चुनिंदा दोस्त बचते हैं वो आपके खुद के अपने होते हैं। यू नो, यू रियलाइज, हो सकता है रोज मिलना भी नहीं हो रहा हो, लेकिन हाँ, जब मिल रहे हैं तब बढ़िया मिल रहे हैं, बातें हो रही है। फिर आती है 40s की दोस्ती, बिना किसी फेक दिखावे वाली, जहाँ रोज बात नहीं हो रही है, रोज मिल नहीं रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स देन द डेप्थ ऑफ कॉन्वर्सेशंस एंड शेयरिंग दोज सीक्रेट्स जो शायद आप परिवार को नहीं बता रहे हैं लेकिन उन दोस्तों को बता रहे हैं। फिर आती है 50s वाली दोस्ती, 60s, 70s, 80s, यू नो, फिर वो होते हैं कि हम पुराने वक्त याद कर रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंड दवाइयाँ डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉबेबली ये डिस्कस कर रहे हैं कि तू काले बालों में कैसी लगती थी या लगता था। अलग अलग फेजेस और डेकेड्स की अलग अलग दोस्ती, लेकिन सबसे प्यारी बात अबाउट एनी दोस्ती इज दोस्त हम खुद चूज करते हैं, नहीं, और चाहे जैसे भी हो, जो असली होते हैं ना, दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग बिहाइंड योर बैक। और अगर कोई आपको असली दोस्त नहीं मिला है तो आप बन जाओ ना किसी के दोस्त, ट्राई तो करके देखो यार। ये गाना KK की आवाज में, टू ऑल द ब्यूटिफुल फ्रेंड्स आउट देयर। क्रिंज हरकत लग सकती है आपको, या हो सकता है आपका थोड़ा ऑरा कम हो जाए, लेकिन कभी कभी ना दोस्त को ऐसे ही बहुत दिन से बात नहीं की हो तो फोन करके बोल दिया कर कि भाई मिस कर रहा है यार तुझे। अच्छा लगेगा उसको। विद दिस लेट मी से अ टाटा टू यू। मुझे भी आप मैसेज करके बोल सकते हो कि अब आप मुझे मिस करोगे, क्योंकि अब मैं अगले एपिसोड में मिलूंगी ना आपसे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ढूंढ सकते हो paruls.world के नाम से, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7045983983। बनो ना यार मेरे दोस्त भी। प्लीज मुझे बताओ आप कौन सा गाना सुनना चाहते हो अगले एपिसोड में, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। और इस एपिसोड में आपको कौन सा गाना अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा, एनी फीडबैक, एनी कॉन्वर्सेशन दैट यू वॉन्ट टू हैव विद मी, ब्रिंग इट ऑन मैन। और सुनते रहो मिर्ची, मैं मिलूंगी आपसे थोड़े वक्त बाद। अपना ख्याल रखो, बहुत सारी मस्ती करो, एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विद राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं. या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah.

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया। और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
2: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
3: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoonu, बुक योर्स नाउ।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था, इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: गुलशन देवैया कौन सी फिल्म को देखकर लगा था कि मुझे एक्टर बनना है, मैं भी ये कर सकता हूँ?
4: सत्या देखे तो उम्मीद जगी थी कि हम आ सकते हैं। मनोज जी को देख के लगा कि नहीं नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
3: ये तो सत्य है कि आप भी कर सकते हैं। दिस वॉज गुलशन देवैया ऑन मिर्ची एट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची एट्स हॉट।
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टाइटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल्ड शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा क्या करूं
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग, वो एक दूसरे को मिल रहे थे। काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था

और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
5: भाई यार एक बात तो है, इस फाट के आगे आर्ट नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखड़ते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ छोड़ो जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आने।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अगर आपको किसी को ट्रोल करना होता तो कैसे करते?
4: मैं करूँ?
5: आप करोगे?
4: नहीं, मैं करवाता मतलब मेरा होता है
5: सर, वो तो पता है मेरा बस चलता है, एक एक को घुसण मार के आती हूँ।
4: माय फ्रेंड, हाउ आर यू माय फ्रेंड।
3: ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमानो हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं एक कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: I'm joking.

एक ऐसी फिल्म जिसने हमें जम करके हंसाया और बहुत सारे सीन्स में इमोशनल भी कर दिया, आज उसी की बात हो रही है, बावर्ची। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही हूँ ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। अच्छा, जो रेट्रो फैंस हैं उन्होंने डेफिनेटली ये फिल्म देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में राजेश खन्ना बावर्ची बने थे, एक जॉइंट फैमिली के लिए खाना बनाया करते थे। पर अगर जब आप फिल्म देखोगे ना तो वो खाने से ज्यादा वो पूरी फैमिली का ख्याल रखते थे। सबके सीक्रेट्स भी इसी बावर्ची के पास होते हैं। जब ऋषिकेश दा ने ये अलग हट करके कैरेक्टर एकदम अलग हट करके फिल्म काका को सुनाई ना, उन्हें बड़ा पसंद आया। सबसे ज्यादा एक्साइट उनको किया था बावर्ची की कॉस्ट्यूम, हाफ पैंट्स, एक शर्ट और सर पे टोपी। अब ये जो टोपी थी ना, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस टोपी को दो वजहों से पहना था राजेश खन्ना ने, एंड वो दो रीजंस क्या थे? आहा, अब तो आप मुझे जान गए हो, ऐसे कहाँ बताती हूँ मैं आपको। ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में श्रेया को तो बड़ा मजा आता है, तो गाने सुन करके जल्दी से वापस आओ, फिर बताती हूँ इस टोपी के पीछे की कहानी। ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दा जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने हैं वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।

के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना स्पाइडरमैन की नई वाली मूवी चल रही थी, एक आदमी ने फाट मारा तो सब लोग थिएटर से भाग गए।
4: एक बात तो है, इस फाट के आगे आठ नहीं टिक पाया और अब स्पाइडरमैन के साथ साथ ये लोग भी मास्क पहनेंगे।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश राणा बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर्ड थी। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है, ऋषिकेश दा ने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर्ड थी और इसका नाम था गोल्पो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी, उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जीन्स पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: रणबीर कपूर, जब भी आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में घुस रहे होते हैं, एक कैप या हैट हमेशा आपके सर पे होती है। व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अ हैट?
4: दिस हैट हैज बीन अटैच्ड विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। आई एम अ हैट गाय, आई फील इट्स माय सिक्योरिटी ब्लैंकेट और अ बैड हैट व्हिच आई एम नॉट टू शो हाउ बैड माय हेयर लुकिंग राइट नाउ, बट आई लाइक हैट्स, इट काइंड ऑफ मेक्स मी सिक्योर, इट मेक्स मी हैप्पी।
3: रणबीर कपूर, जो आपको खुश करे वो हमें खुश करे। कल से मैं भी हैट पहन के निकलूंगी। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हैट ओ ओ हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
10: 89.6, 89.6.
0: Mirchi. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जीन्स पर आप और श्रेया के साथ। मेरा जाने का टाइम तो हो गया है, पर आपको पता है ना मैं अकेले नहीं जाती हूँ। इस समय एक गाना चूज करके मैं और आप मिल करके हाईवे तक घूम के आते हैं। तो चलो गाड़ी में जल्दी से बैठो। तो आज का मेरा हाईवे हिट पहली मुलाकात पे, एंड स्पेशली जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलने वाले होते हो ना, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या बातें होंगी, वो मुझसे क्या कहेगा, मैं उससे क्या पूछूंगी, आगे कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा हम कैसे लग रहे होंगे एक दूसरे को, ये सब सवाल होते हैं ना। तो आज उसी एक्साइटमेंट पे
1: आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
0: यही गाना सुनते हुए चलते हैं। On that note, this is Shreya signing off. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक और इंस्टा पे, RJ Shreya with love. ये है मेरा हैंडल, that's RJ SHREYA Shreya with love.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

तकती है नजर, वो कौन है जिसने किया है मुझको खुद से बेखबर, वो कौन है जो मेरे पल पल में शामिल है।

जाना कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है